जन नांग निर्वाण पद पाया, हर उत्तम हर पद चंगा, कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम, तन प्रेम हर चावक लाया राम, तन प्रेम हर घर लाए चावक, मन जिने गुरमुख जीतया, अगड़ो कड़ावे शब्द पावे, अप्यो हरस पीतया, सुन श्रवण बाणी गुर वखाणी, आरंग तुरी चढ़ाया, महामार्ग पंथ बिगड़ा, जन नानक पार लंघाया, घोड़ी तेजन दे राम पाइया राम, जित हर प्रव जापे सा तन तन तुखाइया राम, जित हर प्रव जापे सा तन सा बस, तुर पाया किरत जुड़ंदा, चढ़ देहड़ घोड़ी बिखम लगाए, मिल गुरमुख परमानंदा, हर घर काज चाया पूरे, मिल संत जना जन आई, जन नानक हर वर पाया मंगल, मिल संत जना वाधाई, वढ़ंस महला चौथा, दे तेजनड़ी हर नवरंगिया राम, गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम, ज्ञान मंगी हर कथा चंगी, हर नाम गतमित जानिया, सब जन्म सब लो किया करत, हर राम नाम खानिया, हर राम नाम सराय हर प्रभ, हर भगत हर जन मंगिया, जन कहे नांग सुनो संतो, हर भगत गोविंद चंगिया, दे कंचन जीन सुविन्ना राम, जड़ हर हर नाम रतन्ना राम, जड़ नाम रतन गोविंद पाया, हर मिले हर गुण सो कणे, गुर शब्द पाया हर नाम ते आया, वड़पागी हर रंग हर बने, हर मिले स्वामी अंतर जामी, हर नव तन हर नव रंगिया, नानक वखाणे नाम जाने, हर नाम हर प्रा मंगिया, कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम, मन मैगल गुर शब्द वसया या राम, मन वसकत आया परम पद पाया, सातन कंत प्यारी, अंतर प्रेम लगा हर सेती, कर सोहे हर प्रभ नारी, हर रंग राती सहजे माती, हर प्रभ हर घर पाया, नानक जन हरदास कहत है, वड़पागी हर घर त्याया, दे घोड़ी जी जित हर पाया राम, मिल सतगुरु जी मंगल गाया राम, हर गाए मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेवकी, प्रभ जाए पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुपाए, हर गुरमति मन त्याया, जन नानक हर कृपा थारी, दे कोड़ी चढ़ हर पाया, अराग वढ़ंस महला पंजवा, शंत कर चौथा, एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद, गुर में लद्दा जी राम प्यारा राम, यो तन मन दितड़ा,

ठाकुर मेर कित मुख तुसा लागी, गुण अवगुण मेरा किशना बिचारिया, बक्सली आखिन माघी, नौंद पाई वजी वधाई, वाजे अनगल तूरे कहो नानक मैं वर कर पाया, मेरे लाथे जी सगलब सूरे, सलोक क्या सुनिंदो कूड़, वंजन पमन चुलारिया, नानक सुनियर ते प्रवान, जो सुनिंदे सच तनी, शंत तिन कोल कुमाई, जिन प्रसरमणी सुनिया राम, से सह सुहिले, जिन हर गरसना पणिया राम, से सह सुहिले गुणे अमूल्य, जगत उधारने आए, भय बोच सागर।

मन इच्छे अड़ा फल पाई गए राम, मन इच्छ पाई गए प्रवते आई है, मिटे जम के त्रस गोविंद गाया सा संगाया, पई पूर्ण अस तज मान मोह विकार सगले, प्रभु कै मन पाई है, बिनवंत नानक दिन सरैणी सदा घर घर त्याई है, दर वाजे अनहद वाजे राम, काट काट घर गोविंद गाजे राम, गोविंद गाजे सदा बेराजे, अगमे अगोचरी उच्चा गुण बेअंत किस कहन न जाई, कोई न सके पहुचा आप उपाय आप प्रतपाले, जी जंत सब साजे बिनवंत नानक सुख ना भगती, दर वजे अनखद वाजे राग बढ़हंस महला पहला, कार पंजवा अरहानिया एक ओ अंकार, सदगुर प्रसाद तन सरंदा सच्चा पातशाहो, जिन जग तन दे लाया मोलत पुन्नी पाई परी, जानी एड़ा कत चलाया जानी कत चलाया, लिखिया आया रुन्ने वीर सवाए, काया हस्ती आवे छोड़ा जादर पुन्ने मेरी माए, जेगा लिखिया तेगा पाया जेगा पुरब कुमाया, तन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग तंडे लाया, साहेब सिमरो मेरे पाई हो सबना यो पयाना, इथे तंदा कूड़ा चार देहा आगे सर पर जाना, आगे सर पर जाना ज्यो मेहमाना, काहे गर्व की जय जित सेवे दरगे सुख पाई है, नाम तसे काली जय आगे हुक्म ना चले मूले, सिर सिर क्या विखाना, साहिब सिमरो मेरे पाई हो सबना यो पयाना, ज्योत पावे समृत सोथिये हिलड़ा यो संसारो, जल थल महील रब रहा साचड़ा सिरजनहारो, साचा सिरजनहारो अलख अपारो, ताका अंत न पाया आया तिनका सबल पया है, एक मन जिनी ते आया ताहे टाए उसारे आपे, हुक्म सवार नहारो ज्योत पावे समृत सोथिये।

हा कारड़ा आया है, हा कारा आया जात पाया, रुन्ने रोमन हारे, पोत पाई पातीजे रोवे, प्रीत में अत प्यारे, पै रोवे, गुणसार समाले, को मरे न मोया नाले, नानक जुग जुग जान सिजाना, रोवे सच समाले।

तेत पै दे पग खिस तेर रंग राता सो सच्चा चोला तेत पै दे तिखा निवारे प्रा मेरा साहिब सबदू ऊचा है क्यों मिला प्रीतम प्यारे मैं प्रभ सच पछाणिया होर फूली अवगुण यारे मैं सदा रावे तेरे अपना सचड़े शब्द विचारे।

चूला पिरके अंक समाए ते जेवड़ अवर ना सूजई किसे आगे कहिए जाए। तू सच्चा सच सलाहिए जे सतगुर दे बुझाए जिन्नी सचड़ा सच सलाया हाउ तिन लागो पाए। सीजन सच्चे निर्मले तिन मिलिया मल सब जाए तिन मिलिया मल सब जाए सच्चे सरनाए सच्चे सहज सुखाए। नाम निरंजन अगम अगोचर सतगुर दिया बुझाए अनदिन भगत करे रंग राते नानक सच समाए। जिन्नी सचड़ा सच ते आया हाउ तिन के लागो पाए।

अंतर सांत सदा सोह दर सच्चे सोभा पावे। नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाहे पौड़ी। गुरमुख प्रहलाद जप हर गद पाई। गुरमुख जनक हर नाम निवलाई। गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाई। बिन गुरु हर नाम ना किने पाया मेरे भाई। गुरमुख हर भगत हर आप लहाई। श्लोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत न आईया शब्द न लागो पाओ। ओस नू सुख न उबजै भावे सौ गेड़ा आवो जाओ। नानक गुरमुख सहज मिले सच्चे सिउं लिव लाओ। महला तीजा ए मन ऐसा सतगुर खोज लहो जित सेवै जन्म मरण दुख जाए। सहसा मूल न होवै होमे शब्द जलाए। कूड़े की पाल विचों निकले सच वसे मन आए। अंतर सांत मन सुख होए सह संजम कार कमाए। नानक पूरे कर्म सतगुर मिले हर जो कृपा करे रजाए। पौड़ी जिसके कर दीवान हर होए तिसकी मुठ्ठी विच जगत सब आया। तिसको तलकी किसे दी नाही हर दीवान सब आन पैरी पाया। मानसा क्यों दीवाणो कोई नस पज निकले हर दीवाणो कोई किथे जाया। तो ऐसा हर दीवान मसिया भगता के हिरदय तेन रहंदे खोंदे आन सा भगता अगे खलवाया। हर नावे की वड्याई कर्म प्राप्त होवे गुरमुख विरलै किने त्याया। श्लोक महला तीजा।

ताम्रनगार यो मनुआ सदा सुखवस सहज करे व्यापारा अंतर गुर ज्ञान हरतन है मुक्त करा मनहारा नानक जिसनु नदर करे सो पाए तो होवे दर्श त्यारा पौड़ी तन तन सो गुरसिख कहिए तू सतगुर चरणी जाए पया तन तन सो गुरसिख कहिए जे हर नामा मुख राम कहया तन तन सो गुरसिख कहिए जिस घर नाम सुने है, मन अंध पया तन तन सो गुरसिख कहिए जिन सतगुर सेवा कर घर नाम लया तिल गुरसिख कौ फाऊ सदा नमस्कारी जो गुर कै फाणे गुरसिख चलिया।

दूजे पाए, रिद्ध सिद्ध सा मोह, नाम नवस्ते मन आए, गुरसेवा ते मन निर्मल होवे, अज्ञान अंधेरा जाए, नाम रतन हर प्रगट होआ, नानक सहज समाए। महला तीजा, शब्द साधन आयो, नाम न लगो प्यार, रसना फिता बोलना नित नित हुए खुआर, नानक किरद पै कमावना कोई न मेटन हार। पौड़ी, तन तन सतपुरख सतगुरु हमारा, जित मिले हम को सांते आई, तन तन सतपुरख सतगुरु हमारा, जित मिले हम हर भगत पाई, तन तन हर भगत सतगुरु हमारा, जिकी सेवा ते हम हर नाम लिवलाई, तन तन हर ज्ञानी सतगुरु हमारा, जिन वैरी मित्र हम को साध समधिट दिखाई, तन तन सतगुरु मित्र हमारा, जिन हर नाम से हमारी प्रीत बनाई। श्लोक महला पहला, कर ही मुंद वदेश तेर,

गई वजाए जो असमान ना मावनी तिन नक नथा पाए जे मन जाने सूलियां काहे मिठा खाहे नानक औगुण चेतड़े।

खबर ना पाई, अखी मीड चिल्लिया अंधियारा, हर दर्द से ना पाई, जम दर बादा ठौर न पावे अपना किया कमाई, नदर करे ताए अखी वेखा कहना कथन ना जाई, कन्नी सुन सुन शब्द सलाही अमृत हृदय वसाई, निरपो निरंकार निर्वैर पूर्ण जोत समाई, नानक गुरमन परम ना पागै सच नाम वड़ियाई, सोरठ महला पहला दो तुके पुड़ धरती पुड़ पानी आसन चार कुंड चौबारा, सगल पवन की मूर्त एका मुख तेरे टकसाला, मेरे साहेबा तेरे चूज वेड़ाना जलथा।

प्रसन्न कोई न किसी जेह अंडज जेरज उत्कुज सेतज तेरे की तेजनता। एक पुरब मैं तेरा देखिया तू सबना महेरवंता तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया मैं मूर्ख किसी दीजै परमत नानक सुन मेरे साहिबा दुबदा पत्थर लीजै। सोरठ महला पहला हौ पापी पतत परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी अमृत चाख परम रस राते ठाकुर शरण।

होचे तू गौरा हम हौरे तुझ की मन राते आयनस प्रभाते हर सना जाप मन रे तुम साचे हम तुम ही राचे शब्द भेद फुन साचे आयनस नाम रते से सूचे मर जन्मे से काचे अवर ना दिसे किस सालाही किसे सरीक न कोई प्रणत नानक दासन दासा गुरमत जान्या सोई सोरठ महला पहला अलख अपार अगम अगोचर नाथ काल न कर्मा जात अजात अजोनी संपो नाथ पाओ न परमा साचे सचियार मिटो कुर्बान नाथ रूप वर्ण नहीं रेखिया साचे शब्द निशान रखाओ नाथ माद पिता सुध बंधव नाथ काम न नारी अकोल नरंजन अपर परंपर सगली ज्योत तुम्हारी कड़कड़ अंतर ब्रह्म लुकाया कड़कड़ ज्योत सबाई बजर कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय ताड़ी लाई जंत उपाय काल सिर जनता वस गत जुगत सुबाई सदगुर से पदार्थ पावे टूटे शब्द कमाई सूचे पांडे साच समावे विरले सूचा चारी तंते कौ परम तंत मिलाया नानक शरण तुम्हारी सोरठ महला पहला जो मीना बिन पानी है तू सागत मरे प्यास त्यू हर बिन मरिये रे मना जो बिरथा जावे सास मान रे राम नाम जस ले बिन गुर यो रस क्यों लहो गुर मिले हर दे रहाओ संत जिना मिल संगति गुरमुख तीर्थ होए अड़सर तीर्थ मजना गुर दर्श प्राप्त होए ज्यो जोगी जत बारा तप नाही सत संतोख त्यों नामे बिन दिहोरी जा मारे अंतर दोख साकत प्रेम न पाईए हर पाई गे सदगुर पाए सुख दुख दाता गुर मिले कहो नानक सिफत सुमाए।

निर्मल नाम जपो सद गुरमुख अंतर की गत ताही जियो। पर हर लोभ निंदा कूड त्याग हो सद गुरबचनी फल पाही जियो। जो पावे त्यों राखो हर जियो जन नानक शब्द सलाही जी।

कविया सब ठाई हृदय नाम अपारा जो जुग बाणी शब्द पछाणी नाओ मीठा मने प्यारा सतगुर सेव जे नाम पछाता सफल जन्म जग आया हार चाख सदा मन तृप्तिया गुण गावे गुणी अगाया कमल प्रगास दा रंग राता अनखा शब्द बजाया तन मन निर्मल निर्मल बाणी सच्चे सच समाया राम नाम की गत कोई ना बूझे गुरमत हृदय समाई गुरमुख होवे सो मग पछाणे हर रस रसन रसाई जब तब संजम सब गुर ते होवे हृदय नाम साई नानक नाम समाले से जन सोहन दर साचे पद पाई सोरठ महला तीजा दो तुके सतगुर मिले उल्टी पई भाई जीव

लागे पाई, गुरमुख पाए हर थाए रखाओ। बिन गुर प्रीत ना उपजे पाई, मनमुख दूजे पाए। तो कुटे मनमुख कर्म करे पाई, पल्ले किशु न पाए। गुर मिले नाम मन रविया पाई, साची प्रीत प्यार सदा हर के गुण रवे पाई। गुर कह गेत अपार, आया सो प्रवान है पाई, जे गुर सेवा चित लाए। नानक नाम हर पाई गे पाई, गुर सबदी मेलाए। सोरठ महला तीजा कर पहला, ती गुणी तिरपुण व्यापिया पाई, गुरमुख बूझ बुझाए।

तेरे मन वसै पाई, सदा हर के गुण गाए रखाओ। नामे ते सब उपजे पाई, नाए विसरिया मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है पाई, सूते गए मुहाए। गुरमुख जागे से उबरे पाई, भवजल पार उतार। जग में लाहा हर नाम है पाई, हृदय रखिया उरतार। गुरसरणाई उबरे पाई, राम नाम लिव लाए। नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाए। तोरठ महला तीजा कर पहला, सदगुर सुख सागर जग अंतर होर थे सुख नाही। हौम में जगत दुख रोग व्यापिया, मर जन्मे रोवे ताही। प्राणी सदगुर सेव सुख पाए।

संध्या तर्पण करे गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सु वडभागी, जिसनु आप मिलाए। हारस पीजन सदा त्रिवतासे, विचो आप गवाए। यो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मग ना पाए। नानक सतगुर मिले।

सब जग मछली हर आपे, आप फुल न फुल ही प्यारा, अवर न दूजा जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, तुने आप जाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तवता पे, आपे सदगुर आप है चेला, उपदेश करे प्रभ आपे, आपे नाउज पाएंदा प्यारा, आपे ही जप जापे, आपे अमृत आप है प्यारा, आपे ही रस आपे, आपे आप सलांदा प्यारा, जन नानक हारस थापे, सोरठ महला चौथा, आपे कंडा आप तराजी, प्रभ आपे तोल तोलाया, आपे सौ आपे वणजारा, आपे वणज कराया, आपे धरती साजियन प्यारे, पिछे टंक चढ़ाया, मेरे मन हर घर त्याए सुख पाया, हर घर नाम निधान।

संत संगजा का मन शीतल, ओ जाने सगली ठंडी। होमे रोग जा का मन व्यापत, ओ जन्म मरे बिल लाती। ज्ञान अंजन जा की नेत्री पड़िया, ताको सर परगासा। अज्ञान अंधेरे सू सनाही, बहुड़ बहुड़ परमाता। सुन बेनंती स्वामी अपने, नानक इहो सुख मांग है। जय कीर्तन तेरा साधु गावे, तय मेरा मन लागे। सोरठ महला पंजवा, तन संतन का तन संतन का, मन संतन का किया। संत प्रसाद हर नाम ते आया, सर्व कुशल तब थिया। संतन बेन अवर न दाता बिया, जो जो शरण परे साधु की, तो पार ग्रामी किया रहाओ। कोट पराध मिटे जन सेवा, हर कीर्तन रस गाई है। ईगा सुख आगे मुख उजल, जन का संग बड़ भागी पाई है। रसना एक अनेक गुण पूर्ण, जन की केत की उपमा कही है। अगम्य गोत्र सद अबनासी, शरण संतन की लई है। निर्गुण नीज अनाद अपराधी, ओर संतन की आही। बूढ़ तमोग्रे अंध कूप मह, नानक लेहो निवाही। सोरठ महला पंजवा कर पहला, जाके हृदय वसिया तू करते। ताकि तय आस पुजाई, दास अपने को तू विसरे नाही। चरण तूर मन पाई, तेरी अकथ कथा कसन ना जाई। गुण निधान सुखदाते स्वामी, सबते ऊंच बढ़ाई रखाओ। सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई। सेवक को तुम सेवा दीनी, दर्शन देख आघाई। सर्व निरंतर तुम्हें समाने, जा को तुधे आप बुझाई। गुर प्रसाद मिट्यू अज्ञाना, प्रगट पय सवठाई। सोई ज्ञानी सोई ध्यानी, सोई पुरख सुपाई। कहो नानक जिस पय दयाला, ताको मन ते बिसर न जाई। सोरठ महला पंजवा, सगल समग्री मोहे व्यापी। कब ऊचे कब नीचे, शुद्ध न होइगे काहू जतना। ओड़क को ना पहुँचे मेरे मान, साध शरण छुटकारा। बिन गुर पूरे जन मरना रही, फिर आवत बारो बारा रगाओ। वो जो परम पुलावा कहियत, तिन में उर्जो सगल संसारा। पूर्ण भगत पुरख स्वामी का, सर्व थोग ते न्यारा। निंदो नाही काहू बाते, यो खसम का किया। जाको कृपा करी प्रा मेर है, मिल सा संत नौ लिया। पार ब्रह्म परमेश्वर सदगुर, सबना करत उधारा। कहो नानक गुर बिन नहीं तरिये, यो पूर्ण तत् विचारा। सोरठ महला पंजवा, खोजत खोजत खोज बिचार्यो। राम नाम ता सारा, किलभ काटे निमख आराध्या। गुरमुख पार्यो तारा, हर रस पीवो पुरख ज्ञानी। सुन सुन महा तृप्त मन पावे, साधु अमृत बानी रगाओ। मुगत भुगत जुगत सज पाईगे, सर्व सुखा का दाता। अपने दास को भगत दान देवे, पूर्ण पुरख विधाता। श्रमणी सुनिए रसना गाइये, हृदय त्याईये सोई। करण कारण समरथ स्वामी, जाते बिरथा ना कोई। वडे भाग रतन जन्म पाया, करो कृपा कृपाला। सा संग नान गुण गावे, सिमरे सदा गोपाला। सोरठ महला पंजवा, कर स्नान सिमर प्रव्यपना। मन तन पय अरोगा, कोड विघ्न लाथे प्रसरणा। प्रगटे पले संयोगा, प्राबाणी शब्द सुपाखिया। गावो सुनो पढ़ो निदपाई, गुरपूरे तू राखिया रहाओ। साचा साहेब अमित वडाई, भगत वशल दयाला। संता की पैज रखदा आया, आद बिरद प्रतपाला। हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो, सर्व वेला मुख पावो। जरा मरा ताप सब नाठा, गुण गोविंद नित गावो। सुनी अरदास स्वामी मेरे, सर्व कला बण आई। प्रगट पई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की।

प्रसंत से हितकारी, विद्या में विद्यंसी रचया, नयन देख सुख पावे, जैसे रसना साध लुभानी, त्यो हर जन हर गुण गावे, जैसी भूख तैसी कापूर, सगल कटा का स्वामी, नानक प्यास लगी दर्शन की, प्रा मिलिया अंतर जामी, सोरठ महला पंजवा, हम मैले तुम उज्जल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, निको ठाकुर दिशा रहाओ, तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा, निर्गुणी आरे गुण नहीं कोई, तुम दान देओ मेहरवाना, तुम करो भला हम पलो न जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निदान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे, कहो नानक हम ए हवाला, राग संतन कै पाछे।

तू दाता मांगन को सगली दान दे प्रापन खिर मैं अवर खिने मैं अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गैर गंभीरो ऊंचो अगम अपारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अंध पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी।

सुखदाता गुर पूरे दिया उपदेशा तुम्हें संग पराता रहाओ ताम क्रोध लोभ मोह अभिमाना ता मैं सुख नहीं पाईए हो रेन तू सगल की मेरे मान तो अनद मंगल सुख पाईए काल न पाने अंतर विध जान ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम ओ मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा ना वर्तन ना मुवा लेवा नाम नानक प्राण अधारा सोरठ महला पंजवा मृतक को पायो तन सासा विशिरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पै स्रोते हर नामा मोह गाया पूरे गुर की देख वडाई ताकि कीमत कहन न जाई हरहाओ दू सो का टायो डेरा अंध मंगल बिसरामा मन बांझत फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा ईहा सुख आगे मुख उजल मिट गए आवन जाने निरपो पै हृदय ना मसिया अपने सदगुर कै मन पाने उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द परम भागा कौ नानक ताके पूर करमा जाका गुरचन्नी मन लागा सोरठ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु ना पाईए पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याईए सिमरहो हर हर नाम परानी बिरसे काची दे अज्ञानी हरहाओ मृत्युना अर स्वप्न मनोरथ ताकि कछ ना वडाई आराम भजन बिन काम न आवस संग न काहू जाई हो करत बिखाए अवरदा जी को काम न कीना धावत धावत नह तृपतासिया आराम नाम नहीं चीना साध विकार विखे रस मातो असंख खते कर फेरे नानक की प्रा पाए बेनंती काटो अवगुण मेरे सोरठ महला पंजवा गुण गावो पूर्ण अवनाशी काम क्रोध बिख जारे महाबिघम अगन को सागर साधु संग उधारे।

आप गुर गोपाल प्रसोई जा की शरण पया सुख पाई है बहुत दुख ना होई रहाओ। वड भागी सा संग प्राप्त तिन पेट दुर्म दखोई तिन की तूर नानक दास बांछ है जिन हर नाम हृदय परोई। सोरठ महला पंजवां जन्म जन्म के दुख निवार है सूका मन साधार है दर्शन पीड़ित होत निहला हर का नाम विचार है मेरा वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देव है काटे जमकी फंदा रखाओ। समर्थ पुरख पूर्ण विधाते आपे करने हारा अपना दास हर

सदगुर प्रसाद मिल पंचो नि सहसा चुकाया सिगदारो न पतियाया उमरावो आगे तेरा मिल राजन राम न बेरा अब ढूंढन कतो न जाई गोविंद पेटे गुर गोसाई रहाओ आया प्रभ दरबारा ता सगली मिट्टी पुकारा लभदे अपनी पाई ता कते आवे कद जाई ते साच न्याय नबेरा ऊहा समठा गुर समचेरा अंतर जामी जाने बिन बोलते आ पछाने सर्व थान को राजा ते अनहर शब्द अगाजा तिस पै क्या चतराई मिल नानक आप गवाई सोरठ महला पंजवा हिरदय नाम साय हो कर बैठे गुरु त्याय हो गुर पूरे सत कहया सो सुख साचा लहया अपना होयो गुर मेहरवाना आंध सुख कल्याण मंगल स्यों कर आए कर सिनाना रहाओ साची गुर वडियाई ताकि कीमत कह न जाई सिर साहा पातशाहा उर पेड़ मन ओ माहा सगल पराज तलाथे मिल सा संत कै साथे गुण निदान हर नामा जप पूर्ण होए कामा गुर कीनो मुक्त द्वारा हलसट करे जयकारा नानका मेरे साथे जन्म मरण फैलाथे तोरठ महला पंजवा गुर पूरे कृपा तारी प्रापूरी लोच हमारी कर स्नान गृह आए अंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिये उठत बैठत हर हर त्याईये आन दिन सुकृत करिये रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड़ पागी पाए कोड़ जन्म के किलबत नासे हर चरणी चित लाए उस करो सदा प्रवे अपने जिन पूरी कल राखी जी जन सब पय पवित्रा सतगुर की सच साखी बिघन मिनासन सब दुख नासन सतगुर नाम दृढ़ाया खोए पाव पय सा पावन जन नान सो कर आया सोरठ महला पंजवा साहिब गुनी गहेरा कर लस्कर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला सब जी पय दयाला जाप अंदर हो गुर चरणा पौ कते नहीं प्रसरणा अरहाओ तेरिया दासा हृदय मुरारी प्रभ अवचल नीब उसारी बाल तन तकिया तेरा तू पार उठा गुरु मेरा जिन जिन सा संग पाया तू प्रभ आप तराया कर कृपा नाम रह दिया फुजल खेम सवतिया होए प्रभु सगाई सब उठला गी पाई सास सास प्रत्याई है हर मंगल नानक गाई है सोरठ महला पंजवा सोग सहज आनंदा प्रा मिलियो मन पाबंदा पूरे गुर कृपा तारी तांगल पई हमारी हर की प्रेम भगत मन लीना नित बाजे अनहत बिना रखाओ हर चरण की ओर सतानी सचू की कान लुकानी जग जीवन दाता पाया हर रसक रस गुण गाया प्रकाट्या जमका फासा मन पूर्ण होई आसा जय पेखा तै सोई हार प्रभन अवर न कोई कर कृपा प्रव राखे साब जन्म जन्म दुख लाथे निर्भव नाम त्याया अटल सुख नानक पाया सोरठ महला पंजवा ठाण पाई करतारे ताव छोड़ गया परवारे गुरपूरे है राखी सरन सचे की ताकी परमेश्वर आप हुआ रखवाला सात सहज सुखिन में उपजे

जाना धर्म न जाना, लोभी माया तारी, ना परयो भगत गोविंद का, ए राखो पैज तुम्हारी, हर जियो निमाणया तू मान, नतीजा चीज करे मेरा गोविंद, तेरी कुदरत कौ कुर्बान। अरहाओ जैसा बालक पाए सो पाई, लख अपराध कमावे, कर उपदेश छिड़के बो पाती, बौड़ पिता गल लावे, पिछले अवगुण बख्श लए प्रभ, आगे मार्ग पावे, हर अंतर जामी सबद जाने, ता किस पै आग सुनाइए, कहने कदन ना पीजे गोविंद, हर पावे पैज रखाइए, आवर ओट में सगली देखी, एक तेरी ओट रखाइए, होए दयाल कृपाल प्रभु ठाकुर, आपे सुने बेनंती, पूरा सदगुर मेल मिलावे, सब चूके मन की चिंती, हर हर नाम अवखद मुख पाया, जन नानक सुख बसंती, सोरठ महला पंजवा, सेमर

रामदास त्रुवर नाते तब उतरे पाप कमाते निर्मल होए कर स्नाना गुर पूरे कीने दाना सब कुशल खेम प्रतारे सही सलामत सब थोक उबारे गुर का शब्द विचारे हरहाओ सा संग मल्लाथी पार ब्रह्म पयो साथी नानक नाम त्याया आदि पुरख प्रापाया सोरठ महला पंजवा जित पार ब्रह्म चित आया सो कर दिये वसाया सो सागर गुर पाया ना सहसा सगल मिटाया हर के नाम की वड्याई आड़ पैर गुण गाई गुर पूरे ते पाई रहाओ प्रभ की अकथ कहानी जन बोले अमृत बाणी नानक दास वखाणी गुर पूरे ते जानी सोरठ महला पंजवा आगे सो गुर दिया पाछे कुशल खेम गुर किया सर्वनिधान सो पाया गुर अपना हृदय ते आया अपने सदगुर की वड्याई मान छे बल पाई संतो दिन जन चढ़े सवाई रहाओ जी जसा पय दयाला प्रभ ने कर दीने सह सुखाय मिले गोपाला

गौरी लाती संग मिलाए लिया मेरे करत संत साध पैसा थी कर गए लीने सर्पस दीने आपे आप मिलाया कहो नानक सर्व

की ओटा जो सिमरै तहकीकत होवै उधरै सगले कोटा रगाओ संत संग जस गाया इह पूर्ण गर तन पाया को नानक आ मिटाया।

अवर सगल मिथिया ए जानो भजन राम को सही। फिरत फिरत बहुते जुगहार्यो मानस दे लही। नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं। सोरठ महला नावा मान रे कौन कुमा तैलीनी। पर दारा निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी। रखाओ मुक्त पंथ जाने उत्ते नाहन धन जोरन कोताया। अंत संग काहू नी दीना बिरथा आप बंदाया। नहर भजो न गुरजन सेवे हो ने उपजो कुछ ज्ञाना। घट ही माए निरंजन तेरे तै खोज उदयाना। बहुत जन्म परम ते हारे हो हस्तर मत नहीं पाई। मान दे पाए पद हर पद नानक बात बताई। सोरठ महला नामा मन रे प्रभ की शरण विचारो। जे सिमरत गणकासी उदरी ताको जस उर तारो। रघाओ अटल भयो रू जाके सिमरन हर निरपय पद पाया। दो खरता ए विद को स्वामी तय काहे बिसराया। जब ही शरण गही कृपा निध गज ग्राते छूटा। मैं मां नाम कहा लो बरनो राम कहत बंधन ते टूटा। अजामल पापी जग जाने निमुख माए निस्तारा। नानक कहत चेत चिंता मान तय।

कौन कर्म विद्या को कैसी, कर्म कौन हुन करई, कौन नाम गुर जाके सिमरै, हर सागर को तरई, कल में एक नाम कृपा निध, जाहे जपे गद पावे, और तर्मता के सवनाहन, हे विद वेद बतावे, सुख दुख रहत सा निर्लेपी, या को कहत गुसाई, सो तुम ही मैं बसे निरंतर, नानक दर्पण न्याय, सोरठ महल्ला नाम, माई मैं केवद लखो गुसाई, महामो अज्ञान तिमर, मो मन रहो उरझाई रहाओ। सागल जन्म परम ही परम खोयो, न अस्थिर मद पाई, विख्या सकत रहो निस्बासर, न छूटी अदमाई, सा संकब हू न कीना, न कीर्त प्रगाई, जन नानक मैं नाय को गुण, अराख लिहो सरनाई, सोरठ महला नाम, माई मन मेरू बस नागे, निस्बासर विखेन को तावत, के बदरो को तागे रघाव, वेद पुराण सिमरत के मासुन, निमखन ही ये बसावे, पर थान पर दारा सुमरच्यो, बिरथा जन्म सिरावे, मदमाया के पयो बाबरो, तू इतने कस ज्ञाना, कड़गी पीतर बस नरंजन, ताको मर मना जाना, जब गी शरण साध की आयो, दुर्म सगल बिनासी, तब नानक चेत्यो चिंता मान, ताटी जम की वासी, सोरठ महला नामा, रे नर ए साची जी तार, सगल जगत है जैसे सुबना, बिन सद लगत न बार रखाओ, बारू पीत बनाई राजपत, रहत नही दिन चार, तैसे ही ए सुख माया के, उर्जो खां गवार, अजहू समझ, कछ बिगड़ो नाहिन, ताजले नाम मुरार, कहो नानक रिज मत साधन कहो, वाख्यो तोय पुकार, सोरठ महला नामा, ए जग मीत ना देखियो कोई, सागर जगत अपने सुख लागे हो, दुख में संग न होई रहा, दारा मीत पूसन बंदी, फगरे तन स्यों लागे, जल ही निरतन देखियो नरको, संग शाड़ सा भाग्य।

सागर तो बैरागी सबन वेद्या मेरी माई अंतर जोत निरंतर बाणी साचे साहिब स्यों लिवलाई रहाओ। असंख बैरागी कह बैराग सो बैरागी जे खसमे पावे हिरदे शब्द सदा पै रचिया गुर की कार कमावे एको चेते मनुआ ना डोले आवत वर्ज रखावे सहजे माता सदा रंग राता साचे की गुण गावे मनुआ पौन बिन सुखवासी नाव से सुख पाई जेबा नेत्र सोतर।

कीर्तन करे हर जा सुने तिस कवला कंता हर दाता सब जगत पिखारिया मंगत जन जनता हर देव दान दयाल होए विज पाथर क्रिम जनता जन नानक नाम त्याया गुरमुख तनवंता। सलोक महला तीजा पढ़ना गुड़ना संसार की कार है अंदर तृष्णा विकार

अब बेगल कहन न जाई। हमारा परम गया पहु पागा, जब राम नाम चित लागा। रहाओ बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमासे आई। बाजीगर स्वांग सकेला, आपने रंग रवे अकेला। कतनी कह परम न जाई, सब कथ कथ रही लुकाई। जाको गुरमुख आप बुझाई,

राजा राम को रस दे रस अनस बिसर जाही रहाओ। जान अजान पै हम बावर सोच असो दिवस जाही। इंद्री सबल निबर विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं। सहित आन अचरित अनकश समझना परे अपर माया।

साच रते अहे निस बैराग क्यों जुग में अमृत साची बाणी पूरे पाग हर नाम सुमाणी सिद्ध साधक तरसे सब लोए पूरे पाग प्राप्त होए सबके साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए सच साचा सच आप दृढ़ाए नानक आपे वेख आपे सच लाए तनासरी महला तीजा नावे की कीमत मित कही न जाए से जन तन जिन एक नाम लिवलाए गुरमत साची साचा विचार आपे बगसे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूर्ख मूर्ख मन माहे होमे विच सवकार कुमाहे गुर प्रसादी होमे जाए आपे बगसे लए मिलाए बिखिया का धान बहुत अभमान अहंकार डूबे ना पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत साला ही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर न कोए जिस सच लाए सुई लागे नानक नाम सदा सुख आगे राग तनासरी महला तीजा कार चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम भीखक पेखारी तेरे तू निज पत है दाता हो दयाल नाम दियो मंगत जन कौ।

बहुनारी पारग्रे जो ना चूकै दिन प्रत करै करै पछतापै सोग लोभ मैं सूकै हर हर नाम अपार अमोला अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन कै नानक गुर ते जाना तन्हा श्री मोहल्ला पंजवा लवे न लागन कौ है कछुए जा को फिर ओ तावे जा को गुर दीनो इहो अमृत तेसी कौ बने आवे जा को आयो एक रसा खान पान आ नहीं खुदया ताके चितना बसा रहाओ मौल्यो मन तन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई बरन न सको उष्टता की कीमत कहन ना जाई काल न मिलियो सेव न मिलियो मिलियो आए अचिंता जाको दया करी मेरे ठाकुर इन गुरे को मानो मंता दीन दयाल सदा कृपाला सर्व जिया प्रदपाला ओत पोत नानक संग रविया यो माता बाल गोपाला तनासरी महला पंजवा बार जाओ गुर अपने ऊपर जिन घर घर नाम दृढ़ाया मां उद्यान अंधकार में जिन सीधा मार्ग दिखाया हमरे प्राण गोपाल गोविंद ईगा ऊगा सर्व थोग की जिसे हमारी चिंद रहाओ जाके सिमरन तर्ब निधाना मान महत पद पूरी नाम लैद कोड अगनस भक्त बाचे सब तूरी सर्व मनोरथ जे को चाहे सेव एक निधाना पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी सिमरत पार पराना शीतल सांत महा सुख पाया संत संग रहे ओला हर तन संचन हर नाम पूजन त्यो नारग कीनो चोला तनास

कंडो अनकबीरी समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम गी सजन सुहेले रखो रखन हार दयाला नानक करके गोले तनासरी महला पंजवां पूजा वर्त तिलक इस नाना

दुतिया पाओ निवार, बंधन काट लियो अपने कार, कभू न आवे हार। तेरी शरण पया हो जीवा, तू समरथ पुरख मेहरबान, आठ पहर प्रभु को आराधी, नानक सद कुरबान। राग तनासरी महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। हां हां प्रभ राख ले हो, हम ते किशु ना होए मेरे स्वामी, कर कृपा अपना नाम देहो रहाओ। अगर कुटुंब सागर संसार, परम मोह अज्ञान अंधार, ऊंच नीच सुख दुख, त्रास नाही तिसना भूख, मन बासना रज बिखे ब्याद, पांच दूत संग महा असाद, जी जहान प्राण तन तेरा, नानक जान सदा हर नेरा। तनासरी महला पंजवा, दीन दर्द निवार ठाकुर, रखे जन की आप, तरन तारण हर निद, दुख न सके ब्याप। साधु संग भजो गोपाल, आन संजम कृष्णा सूझे, ए जतन काट कल काल रहाओ। आद अंत दयाल पूर्ण,

बिना नहीं कोए, जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए, वेद सिमरत कथै सासत भगत करे विचार, मुक्त पाइगे साध संगत बिरस जाए अंधार, चरण कमल आधार जन का राज पूंजी ए

फिरत फिरत पेटे जन साधु पूरे गुर समझाया आन सगल बिद काम न आवे हर हर नाम ते आया ताते मोय धारी ओड़ गोपाल शरण परयो पूर्ण परमेसर बिनसे सगल जंजाल रहाव सुर्ग मृत पयाल भूमंडल सगल व्यापे माए जी उदाहरण सब कुल तारन हर हर नाम ते आए नानक नाम निरंजन गाइए पाइए सर्ब निधाना।

चरण गए प्रभ अपने, सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवा, पर हरना लोभ चूड़ निंद, ए भी करत गुदारी। मृत सिंह आस मिथ्या मीठी, ए टेक मने साधारी। सागत की आवरदा जाए बिरतारी, जैसे कागद के पार मूसा टूक गवाव। काम नहीं गावारी रहाओ, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, ए बंधन छुटकारी। बूढ़ अंध नान प्रकाड, साध जना संगारी। तनासरी महला पंजवा, सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना। शीतल तन मन छाती, रूप रंग सुख तन जी का। पार ब्रह्म मोरे जाती, रसना राम रसायन माती। रंग रंगी

सब तो ते निवर प्रगट प्रताप तुम्हारा, जो जो तेरे खुद दुख आए ओ तत्काल तुम्हारा, निरखो तुमरी ओर हर नीत मुरार, साहो दास को कर गए उधरो मीत रगाव, सुनी बेनती ठाकुर मेरे खसमा ना करे आप, नानक अंध पए दुख पागे सदा सदा हर जाप।

रामो रहाओ, सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपन, निटन आवे जाम, मुक्त बैकुंठ, साध की संगत, जन पायो हर का ताम, चरण कमल हर जन की थाती, कोर सुख विश्राम, गोबिंद दमोदर सिमरो दिन रैन, नानक सत कुरबान, तनासरी महला पंजवा, मांगो राम ते एक दान, सगल मनोरथ पूर्ण होवे, सिमरो तुमरा नाम रहाओ, चरण तुम्हारे हृदय वास, संतन का संग पावो, सो अगर मैं मानना व्याप, आड़ पैर गुण गाओ, स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा, मध्यान्त प्रभ जापन, नानक रंग लगा परमेश्वर।

तृष्ण अगन प्रव्याप बुझाई नानक उदरे प्रव शरणाई तन्हा श्री महला पंजवा। तृप्त भई सज भोजन खाया मन कर सना नाम थाया जीवन हर जप साध संग रखाओ अनक प्रकारी बस्तर उड़ाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ आस असवारी।

इस तारा समुद्र सागर जिन खिन में तारा रहाओ। कोई हुआ क्रम रत कोई तीर्थ नाया, दासी हर का राम ते आया, बंधन काटन हार स्वामी, जन नानक सिमरै अंतर जामी।

पाया, प्रेम भगत प्रा मन पति आया, पड़ पड़ फूले चोटा खावे, बहुत सियाण आवे जागे, नाम जपे पौ भोजन खाए, गुरमुख सेव करे समाए, पूज सिला

परम ध्यानी साच साचे भाव आनंद अनदन हरख साचा दुख किल विख पर हरे सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मिलाप पूरा नामणु गावे गावन हार शब्द सुहावणु सारा ही सचे मन सदगुर पुन दान दया मते फिर संग पावे सहज नहावे देनी ता संगम सत सते आराध एकंकार साचा नित दे चढ़े सवाया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया कहन कहे सब कोय के बड़े आखिए ओ मूर्ख नीच अजान समझा साखिए सच गुर की साखी अमृत भाखी तित मन मान्या मेरा पूज करे आवे विख लादे शब्द सचे गुर मेरा आखण तोट ना भगत पंडारी भार पुर रहे आसोई नानक साच कहे बेनंती मन मान जाए सच सोई।

माया मोह जलाए प्रीतम रसमय रंग करेई प्रभ सचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी नानक साच वसी सोहागण किरस्यों प्रीत प्यारी फिर कर सोहे नार।

अंजनो जियो दुख हर्त करता सुखे स्वामी चरण साधु आया संसार सागर महा बिखड़ा पल एक महे तराया पूरे या सर्वथाई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो बिनवंत नाम सदा सिमरी सर्व दुख पए पंजनो आप लिगे लड़ लाए कृपा तारिया जियो मोए निर्गुण नीज अनाथ प्रभ अगम अपारिया जियो दयाल सदा कृपाल स्वामी नीचता पणहारिया जी जनसा वस तेरे सगल तेरी सारिया आप करता आप भुगता आप सगल बीचारिया बिनवंत नान गुण गाए जीवा हर जप जपो बनवारिया तेरा दर्श अपार

जो होई इंद्र लोक शिव लोक के जैबो उसे तब कर बाहर आयबो क्या मांगो पिछिर नाही राम नाम रख मन माही रखाओ सुबह राज विभय बड़ियाई अंत न काहू संग सहाई पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया इनते कहो कमने सुख पाया कहे तो कबीर अवर नहीं कामा अमरे मन थन राम को नामा राम सिमर राम सिमर राम सिमर पाई राम नाम सिमरन बेन बूढ़ते अदकाई अरहाओ बंता सुधे गृह संपद सुखदाई इनमें कुछ नागे तेरो ताल अवध आई अजामल गजगन का पद कर्म कीने ते उत्तर पार परे राम नाम लीने तूकर कूकर जोन परमे तऊ लाजना आई राम नाम शाड़ अमृत ताहे बेख खाई तज परम कर्म विदन खेद राम नाम लेही गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सदगुर प्रसाद गहरी करके नीव खुदाई ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अदकाई जिन त्रेण थर मूंड बलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्व करत हो बिरस जाए झूठी देही अरहाओ मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से पाई पारे जोजन छत्र चले था देही गिरज ना खाई सर्व सोयन की लंका होती रावण से अदकाई कहा पयो दर बंदे हाथी खिर में पई पराई दुर्वासा से करत ठगोरी यादव ए फल पाए कृपा करी जने अपने ऊपर नाम जो हर गुण गाए तस बैरागन मोए बस कीनी पंचो का मिट नावो छत्र दोए परे अमृत सार बिख को मार कढावो पाचे बौर न आवन पावो अमृत बाणी कड़ते उचरो आत्म को समझावो रहाओ बजर कुठार मोए है शीना तर मिनत लग पावो संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो ये संसार ते तब ही छूटो जो माया नहीं लपटावो माया नाम गर्भ जोन का ते ता दर्शन पावो इत कर पलत करे जो जान तेन पौ सगल चुकाई है कहत नाम दो बार क्या परम हो ए संजम घर पाइये मार वाड़ जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला जो कुरंक निसनाद बालहा जो मेरे मन रामैया तेरा नाम रूढ़ो रूप रूढ़ो अतरंग रूढ़ो मेरो रामैया रहाओ जो तरणी को इंद्र बालहा कुसुम बाज जैसे पवरला जो कोकल को अंब बालक त्यो मेरे मन रामैया चक्री को जैसे सूर बालक मान सरोवर हंसला जो तरणी को कंत बालक त्यो मेरे मन रामैया पार्ग को जैसे खीर बालक चात्रक मो जैसे जलथरा मछली को जैसे नीर बालक त्यो मेरे मन रामैया साधक सिद्ध सगर मुन चाह है बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरो नाम बालक त्यो नाम में मन बीठला पहल पुरगे पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानऊ हर हर नचंती नचना पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचे पिंदी मैं सागरा रहाओ नाचंती गोपी जन्ना नैया ते बैरे कन्ना तर्क नाचा प्रमिया चा

जंगम जाती तायो तूप दीप नहीं बेदा तायो पूजो पाती ताया बो खंड खोजते नविंद पाई ना कछ आए बो ना कछ

कियो हमरा खुशी करे नित जियो परियां छत नीका अनाज मंगो सत सीका कऊ पैस मंगो लावेरी इक ताजन तुरी चंगेरी करकी घीघन चंगी चन तन्ना ले वै मंगी।

हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले तो गुर अंचल दीजे जन नानक चले मिलनता। जैत सरी महला चौथा हीरा लाल अमोल कहे पारी बिन गाक मीका काखा। रतन गा गुर साधु देखे ताब रतन बिकानो लाखा। मेरे मन गुप्त।

जो अमली अमल लुभाना। जिन मन प्रीत लगी हर केरी तेन तुर पाग पुराना। तिन हम चरण सिरे वे खिन खिन जिन घर मीठ लगाना। हर घर कृपा तारी मेरे ठाकुर जन बिछरिया चिरी मिलाना। तन तन सतगुर जिन नाम दृढ़ाया जन नानक तिस कुरबाना। जैत सरी महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया। हार रसक रसक फल लागबा माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी। पुर बचनी बिसगर काटबा मेरा मन आराम ना रस लागबा। हर किए पतत पवित्र मिल सतगुर हर नामे हर चाख बार हाउ। तन तन वड भाग मिलियो गुर साधु मिल साधु ले उन मन लागबा। तसना अगन बुझी सात पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा। तिनके पाखीन तुर पाए जिन स गुर दर्शना पाएबा। ए दूजे पाए पवे गर्भ जोनी ता बिरथा जन्म तिन जायबा। हर द्यो बिमल मत गुर सत पग सेवह हम घर मीठ लगाएबा। जन नानक रेण सत पग मांगे हर होए दयाल दिवाएबा। जैत सरी महला चौथा जिन हर हिरदे नाम ना बस्यो तिर माद की जे हर बन जा। तिन सुनी दे फिरे बिन नावे ओए खाब खा मोए करांजा। मेरे मन जप राम नाम हर माजा। हर हर कृपाल कृपा प्रोतारी गुर ज्ञान दियो मन समझा। अरहाओ हर कीर्त कालजुग पद उत्तम हर पाई गे सतगुर माजा। हौ बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा। दर्शन सद मिलियो वडभागी सब केलबख गए गवाजा। सतगुर साहु पाया वडदाना हर किए बहुगुण सांझा। जिन को कृपा करी जग जीवन हर उरतारियो मन माजा। तर मराए दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा। जैत सरी महला चौथा सत्संगत साध पाई वडभागी मन चल तो पयो अरूड़ा। अनहत तुन वाजे नित वाजे हर अमृत तारस लीड़ा। मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा। मेरे मन तन प्रीत लगाई सतगुर हर मिलियो लाए च पीड़ा। अरहाओ सागत बंद पय है माया दिख संचय लाए ज कीड़ा। हर के अर्थ खर्च न सक है जमकाल सह सिर पीड़ा। तेन हर अर्थ श्री लगाया गुर साधु बहु श्रद्धा लाए मुख तूड़ा। हलत पलत हर शोभा पावे हर रंग लगा मन गूड़ा। हर हर मेल मेल जन साधु हम साध जना का कीड़ा। जन नानक प्रीत लगी पग साध पुर मिल साधु पा खान हर हो मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा तार दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर घर सिमरो अगम अपारा जे सिमरत दुख मिटे हमारा। हर घर सतगुर पुरख मिलाव गुर मिले सुख होई राम। हर गुण गावो मीत हमारे हर घर नाम रखो उरतारे। हर घर अमृत भजन सुनावो गुर मिले प्रकट होई राम। मसूदन घर माधो प्राणा मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना। हर घर दया करो गुर मिलो पुरख निरंजन सोई राम। हर घर नाम सदा सुखदाता हर के रंग मेरा मन राता। हर घर महापुरख गुर मिलो गुर नानक नाम सुख होई राम। जैत सरी महला चौथा हर घर नाम जपाह पुरमुख नाम सदा लैला। हर घर भगत रिड़ाव हो हर घर नाम ओ महाराम। हर घर नाम दया।

आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुनकर कथा नाम ले लाहा। हर हर कृपा तार गुर मिल हो, गुर मिले हर ओ महाराम, कर कीर्त जस अगम अथाह।

रस रस राम हरसाल सलाहा मन राम ना पीना लय लाहा तिन किन भगत करे दिन राती गुरमत भगत ओ महाराम हर हर गुण गोविंद जपाहा मन तन जीत शब्द लय लाहा गुरमत पंच दूत बस आवे मन तन हर ओ महाराम नाम रतन हर नाम जपाहा हर गुण गाय सदा लय लाहा दीन दयाल कृपा कर माधो हर हर नाम ओ महाराम जप जगजीत जपो मन माहा हर हर जगन्नाथ जग लाहा तन तन वड्डे ठाकुर प्रा मेरे जप नानक भगत ओ महाराम जैत सरी महला चौथा आपे जोगी जुत जुगाह।

दूख आराधन दूख आराधन बिसरे ना काहू बेरा, नाम जगत कोड़ सूर उजारा बिरसे परम अंधेरा, थान थनंतर सब नहीं जाई जो दिसे सो तेरा, संत संग पावे जो नानक जिस बौर न होई है फेरा। जैत सरी महला पंजवा कार चौथा दो पदे एक ओंकार, सदगुर प्रसाद आव मैं सुख पायो गुर आग, तजी स्यान बचिंत सारी अंग छोड़े हो त्याग, रहाओ जो देखो तो सगल मोय मोहियो तो शरण परयो गुर भाग, कर कृपा टहल हर लायो तो जब छोड़ी मोहरी लाग, तेरे सागर पावक को जो संत फेटे वड भाग, जन नानक सर्व सो पाए मोरो हर चरणी चित लाग। जैत सरी महला पंजवा मन में सतगुर ध्यान धरा, त्रिड़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभु जीव मया करा, रहाओ काल जल अरमा जंजाला छुड़के जमे डरा, आयो दुख हरण शरण करना पत कयो चरण आसरा, नाव रूप पयो सत संग अनद पार परा, आप्यो पियो गातियो परमा को नानक अजर जरा। जैत सरी महला पंजवा जाको पय गोविंद सहाई, दुख सहज आनंद सगल स्यों वा को व्याद न काई, रहाओ दिसे सब संग रह अलेपा न व्यापे उन्माई, एक रंग तत के बेते सदगुर ते बुध पाई, दया मया कृपा ठाकुर की से ही संत सुपाई, तिनके संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई। जैत सरी महला।

सदगुर प्रसाद पूल्यो मन माया उरझायो जो जो कर्म कियो लाल चलग तेहे ते आप बंधायो रहाओ समझना परी दिखे रस रचयो जिस हर को बिसरायो पंग स्वामी सो जान्यो नाहिन पर खोजन को तायो रतन राम कट ही के पीतर ताको ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत भजन बेन बिरथा जन्म गवायो जैत सरी महला नावा हारजू राख लियो पत मेरी जम को त्रास पयो और अंतर शरण गही कृपा न तेरी अरहाओ महापतत मुग्ध लोभी फोन करत पाप अभारा पय मरबे को विसरत नाहन ते चिंता तन जारा कियो पाप मुद के कारण तेज को उठताया पढ़ी भीतर बसे निरंजन ताको मर्म न पाया नाहिन गुण नाहिन का जप तप कौन कर्म अब कीजे नानक हार पर शरणागत अपहे दान प्रव दीजे जैत श्री महला नामा मान रहे साचा गहो बिचारा आराम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो यो संसारा रहाओ जाको जोगी खोज दिखारे पायो नाहे ते पारा तो स्वामी तुम निट पछानो रूप रेख ते न्यारा पाम नाम जगत में हर को कभू नाहे संभारा नानक शरण पर्यो जग बंधन राखो बिरद तुहारा जय तसरी महल।

कार सतगुर प्रसाद स्वरूप आदि पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वर तिमरंत संत सर्वत रमण नानक अगनासन जगदीश्वर पेखन सुनन सुनामनो मन में दृढ़िए साच पूरयो सर्वत्र में नानक हर अंगराच पौड़ी हर एक निरंजन गाइये सब अंतर सोई कारण कारण समर्थ प्रभ जो करे सो होई खिन में थाप्यो थापद किस बिन नहीं कोई खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रव्या सब लोई आप जाए सो बुझसी निर्मल जन सोई श्लोक रचंत जी रचना मात गर्भ स्थापन तास सास स्मरंत नानक महा अग्नना विनाशन मुख तले पैर उपरे वसंदो कोथड़े थाए नानक सो तनी क्यों विसारियो उदरे जिस दय नाए पौड़ी रक्त बिंद कर निम्या अगन उदर मजार उर्द मुख चील बेकल नरक खोर गुबार हर सिमरत तू ना जल है मन तन उर्तार बेगम थानो जन रखेया तिस तिल नाम सार प्रा बिसरत सो कदे नाहे जासे जन्म हार श्लोक मन इच्छा दान करण सर्वत्र आशा पूर्ण है खंडन कल कलेश प्रा सिमर नानक ने दूरण थावरंग माने जिस संग तैसो लाइगे ने हो तो सो बिंद ना विसरो नानक जिन सुंदर किया देहो पौड़ी जियो प्राण तन तन दिया तीने रस भोग गृह मंदर रथ अस दिए रज पले संजोग सुध बंता सजन सेवक दिए प्रा देवन जोग हर सिमरत मन तन हरिया ले जाए विजोग साध संग हर गुण रमो बिरसे सब सोग त्रोक कुटंब जतन करण माया अनेक उद्यम है हर भगत पादहीन नानक प्रा विसरत ते प्रेत ते सुटड़िया सा प्रीत जो लाई बेअन स्यो नानक सच्ची रीत ताई से तीरत्या पौड़ी जिस विसरत तन पसम होए कहते सा प्रेत खिन घिर में बसन ना देवगी जिनस्यो सोई हेत कर अनर्थ दर्भ संचया सो कार्ज केत जैसा बीजे सो लुणे कर्म यो खेत अकृत कणा हर विस्तरिया जोनी परमहेत श्लोक कोट दान स्नान अनक शोधन पवित्रत उचरंत नानक हर हर रसना सर्व पाप विमुचते ईदन कीतो मूकणा ओरी दतीम पाहे मन वसंदरो सच सहो नानक हब्बे डुखड़े उलाहे पौड़ी कोट अगा सब नास होए सिमर तर नाओ मन चिंदे फल पाईए हर के गुण गाओ जन्म मरण पै कटिए निचल साथाओ पूर्व होवे लिखिया हर चरण समाओ कर कृपा प्रभ राख लेहो नानक बल जाओ श्लोक गृह रचना अपारंग मन बिलास स्वादंग रस कंदाच ने स्मरंत नानक ते जंत दिष्टा क्रिम मुझ अडंबर हब के हो मंज मोहब्बत नेह तो साई जय विसर नानक सो तन खेहे पौड़ी सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे गृह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे मन इच्छे सुख मानद इशनाए विसूरे तो प्रचेतन आवई विष्टा के कीरे बिन हर नाम ना सांत होए किर बिद मन तीरे श्लोक चरण कमल बिरह खोजंत बैरागी दह दिस त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग में मन साई मुख उचरा वत्ता हब्बे लो नानक हब अडंबर कूड़िया तुण जीवा सच्ची सोए पौड़ी बस्ता टूटी चुंपड़ी तीर सब छिन्ना जातना पदना आदरो उद्यान पर मिन्ना मित्र ना इड़तन रूपहीन किज साक ना सिन्ना राजा सगली सिटका हर नाम मन पिन्ना तिसकी तूड़ मन उदरे प्रभोए सो प्रसन्ना श्लोक अनक लीला राज रस रूपं छतर चमर तख्त आसन रचंत मूढ़ अज्ञान अंधे नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हाबरंग माणिया
ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੜਾ ਮੋਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਮਾਇਆ ਤਰੋਹ ਪੌੜੀ ਸੁਪਨੇ ਸੇਤੀ ਚਿੱਤ ਮੂਰਖ ਲਾਇਆ ਬਿਸਤਰੇ ਰਾਜਰਸ ਕੋਕ ਜਾਗਤ ਪਖਲਾਇਆ ਆਰ ਜਾ ਗਈ ਵਿਹਾਏ ਧੰਦੇ ਤਾਇਆ ਪੂਰਨ ਪਏ ਨਾ ਕਾਮ ਮੋਹਿਆ ਮਾਇਆ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਜੰਤ ਜਾਂ ਆਪ ਪੁਰਾਇਆ ਸਲੋਕ ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਦ ਤੇ ਪ੍ਰਥਮੀ ਨਵ ਖੰਡਣ ਹੈ ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਨਾਂਗ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਣ ਕੌਤਕ ਕੋੜ ਤਮਾਸ਼ ਚੇਤਨ ਆਵਸ ਨਾਓ ਨਾਨਕ ਕੋੜੀ ਨਰਕ ਬਰਾਬਰ ਉਜੜ ਸੋਈ ਥਾਓ ਪੌੜੀ ਮਹਾ ਪਯਾਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ ਚੂੜ ਸਮਗਰੀ ਪੇਖ ਸਦ ਕਰ ਜਾਣਿਆ

तन कपटन कुल गर्भत है संचंत दिखिया शलंग शिद्रंग नानक बिन घर संग न चालते पेखंदड़ो की पुल तुम्मा दिसम सोना अड़ना लहंदड़ो मुल नानक साथ न जुलई मा।

नाद को रंग के बेदया सनम उड़तावे पवर लोभी कुसुम्बास का मिल आप बंधावे तू संत जना कर प्रीत है देख दर्श अघावे श्लोक चितवंत चरण कमलंग सास सास आराधन नै विश्रांत नाम अच्युत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है सीतड़ा मन मजावे पलक न थी वे भारा नानक आसड़ी निभावे सदा पेखंदो सच तणी पौड़ी आसावंती आस कुसाई पूरी है मिल गोपाल गोविंद ना कब हो चूरी है त्यो दर्श मन चाओ ले जाए वे सूरी है कोई पवित्र शरीर चरना धूरी है पार ब्रह्म गुरुदेव सदा हजूरी है श्लोक रसना उच्चरंत नामं सर्वणं सुनंत शब्द अमृत है नांग तिन सद बलिहारंग जिन्ना त्यान पार ब्राह्मण हब कूड़ा वे कम एक साई बारे नांग से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यो पौड़ी सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावे प्रामत्था हर्ज लिखे बेअंत सोह है से हत्था चरण पुनीत पवित्र चाले प्रापत्था संता संग उधार अगला दुख लत्था श्लोक पावी अदोद करणं आ रमणं संजोग पूर्ण है गोपाल दस पेटं सबल नांग सो मुहूर्त कीव न सका पाए सुख मिति हु बारे नानक सावे लड़ी परवान जित मिलंदड़ो मा प्री पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई तो मूर्त पला संयोग है जित मिले गुसाई आड़ पैर हर त्याय कै मन इच्छ पुजाई वड़े पाग सत्संग होए निवलागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई श्लोक पत पुनीत गोविंद है सर्व दुख निवारण है तरण सूर भगवान है जे पंत नानक हर हर हरे छड़ो हबे आप लगड़ो चरणा पास नटड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदिया पौड़ी मेल लेहो दयाल तय पय द्वारिया रख ले वो दीन दयाल प्रमत बहु हारिया भगत विशल तेरा बिरद हार पत उधारिया तुझ बिन नाही कोय बिनो मोय सारिया कर गए लेहो दयाल सागर संसारिया श्लोक संत उदरण दयालंग आसरंग गोपाल कीर्तन निर्मलंग संसंगेन ओट नानक परमेश्वर चंदन चंदन सरद रुत मूल न मिटई काम शीतल तीवे नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओर उदरे सगल जान सुन प्रताप गोविंद निरपो पय मन तोट न आवे मूल संत्या नाम तान संत जनासु संग पाइये वड़े पुन आड़ पैर हर चाहे हार जस निरसुन श्लोक दया करणंग दुखरणंग उच्चरणंग नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिवत न माया पाए बलंदड़ी बुल गई रखंदड़ो।

तो अवर न कहू तानी ऐसो अमर मिलो भगतन कहो राज रहे रंग ज्ञानी रोग सोग दुख जरा मर हर जने नहीं निकटानी निरप हो रहे ले एक नानक हर मन मानी टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी ताको तोखा कहां व्याप जाको ओढ़ तुहारी अरहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी नवखंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी गुण निधान गुण तिन ही गाए क्या को कृपा तारी तो सुहिया तन उस जन्मा नानत बलिहारी टोडी महला पंजवा धार दूजा चौपदे एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद तायो रे मान दहदस तायो माया मगन स्वाद लो मोयो तिन प्रभ आव पुरायो रहाओ हर कथा हर जस साध संगत स्यों एक मोहतन यो मन लायो बिगसो पेख रंग कुसुंभ को पारग्रे जो हुन जायो चरण कमल स्यों पाओ न कीनो नय सद पुरख मनायो ताकत को तावे बो पाती क्यो तेली बल्द परमायो नाम दान स्नान न कियो एक निमख न कीर्त गायो नाना झूठ लाए मन तोखयो न बूझो अपनायो पर उपकार न कबहू किए नहीं सतगुर सेव ते आयो पंच दूत रच संगत गोष्ट मतवारो मधमायो करो बेनती साध संगत हर भगत बछल सुन आयो नानक पाग परोहर पाछ राख लाज अपनायो टोडी महला पनवा मानुख बिन बूझे बिरथा आया अनक साहसी गार बो करता जो मृत को ढाया रहाओ ताए ताए कृपन श्रम कीनो

रहिए। साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभ अपना लइए। सदा सदा हम शोरे तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा। नानक बारक।

तीनी आप रघाओ जिसके से फिर तिन ही संभाले तिन से सोग संताप आदे राखे जने अपने हर होए माई बाप जी जंत होए मेहरवाना दया तारी हरनाथ नानक सरन परे दुख पंजन जा काबड़ प्रताप टोडी महला पंजवा स्वामी सरन परे उदर बारे कोड़ अपराध खंडन के दाते खुद बिन कौन उधारे रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाई गे माया रच बंद हारे चरण कम संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक अंध करे हर जप जप सगले रोग निवारे टोडी महला पंजवा हर तीजा चौपदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद हां हां लपट्यो रे मूड़े पशु न थोरी तेरो नहीं सो जानी मोरी रहाओ आपन राम न चीनो खिनुआ जो प्राई सो अपनी मनुआ नाम संगी सो मन ना बसायो छोड़ जाए वाहू चित लायो सो संच्यो जिद पूग तसायो अमृत नाम तोसा नहीं पायो काम क्रोध मोह कूप परया गुर प्रसाद नानक को तरया टोडी महला पंजवा हमारे एक हरी हरी आन अवर संजान ना करी रखाओ वड्डे पागुरे अपना पायो गुरमुख हर नाम दृढ़ायो हर घर जाव ताप्रत नेमा हर घर चाहे कुशल सब खेमा आचार व्यवहार जात घर गुनिया महा आनंद कीर्तन घर सुनिया कहो नानक जिन ठाकुर पाया सब के

जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कोट अंतर के पाप सब खोवे। हर पव जिल पार उतारा रघाओ, काया नगर बस्त हर स्वामी। हर निर्भव निर्वैर निरंकारा, हर निगट बस्त कजन न आवे। हर लादा गुर विचारा, हर आपे सहो सराफ रतन हीरा। हर आप किया पासारा, नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे। तो साहु सच्चा बणजारा, बैराड़ी महला चौथा। जप मन हर निरंजन निरंकारा, सदा सदा हर त्याये सुखदाता। जाका अंत न पारा वारा, रहाओ अगन कुंट में उर्द लिव लागा। हर राखे उदर मंजारा, सो ऐसा अगर सेव हो मेरे मान। हर अंत शिडामन हारा, जाके हृदय बसया मेरा हर हर। इस जन को करो नमस्कारा, हर कृपा ते पाएगे हर जप। नानक नाम अधारा, बैराड़ी महला चौथा। जप मान हर हर नाम नित ध्याए, जो इच्छे सोई फल पावे। फिर दुख

न पावे विण कर्मा किश पाइये नाही जे वो तेरा तावे। लब लोभ अंकार की माती माया माए समाणी इन्नी बाती सो पाइये नाही भई कामण एयाणी। जाए पुछो सुहागणी वाहे किन्नी बाती सो पाइये जो किश करे सो भला कर मानिए हिकमत हुक्म चुकाइये। जा के प्रेम पदार्थ पाइये तौ चरणी चित लाइये सौ कहे सो कीजे तन मनो दीजे ऐसा परमल लाइये। एव कह सुहागणी पैणे किन्नी बाती सौ पाइये आप गवाइगे ता सौ पाइगे और कैसी चतराई। सौ नदर कर देख सो दन लिख कामण नौ निद पाई अपने कंत प्यारी सा सुहागण नानक सा सबराई। ऐसे रंग राती सहज की माती अहे निस पाए समाणी सुंदर साए स्वरूप।

निर्दिनमय प्राणी छिन छिन औदविहात है, फूटे कर जो पानी हराव हर गुण गए ना गाव ही। मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लाग कै न मरन पछाना, आजू काज बिगड़ो नहीं जो प्रभ गुण गावे। कहो नानक ते भजन ते निर्भय पद पावे, तिलंग महला नामा जाग लेहो रे मना जाग लेहो। कहां गाफल सोया जो दिन उपजिया संग ही, सो ती संग न होया रहाओ। मात पिता सुध बंद जा हित जा सो कीना, जियो छूट्यो जब देत डार अग्न मै दीना। जीव तलो व्योहार है जाको तुम जानो, नान खर गुण गाए ले सब सुफन समानो। तिलंग महला नामा हार जस रे मना गाए ले, जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है। कहो मान ले मेरो अरहाओ, संपत रतन राश्यो आत्मनिहो लगायो। काल फास जब गल परी

तेरा नाम है अदारा अरहाव करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी हाजरा हजूर दर पेश तू मनी दरियाओ तू देहंद तू विशियार तू तनी देहे लेह एक तू दिगर को नहीं तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी नामे ते स्वामी बगसंद तू हरी हल्ले यारा खुशखबरी बाल बल जाओ हौ बल बल जाओ नीकी तेरी बेगारी आले तेरा नाओ अरहाओ कुजा आमत कुजा रवती कुजा मेरवी द्वारका नगरी रास बगोई खूब

रसना नाम जपोता मथिये इन विद अमृत पावो मन संपट जित ससरन हावन भावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहेब रब तरहे कहंदे कहे जावे तुम सर अवर ना कोई भगत हीन नानक जन जंपे।

तीर्थ मल मल नहाय, तेरा सदड़ा सुनीजे पाई, जे को भय अलाए, अरहाओ, जैसा भी जे सोलने, जो खट्टे सो खाए, अगय पुछ न हो गई, जे सण निसा

कामना आवई जिद तन नाही सच्चा नाव। सूही महला पहला कार सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद जोगना खिंता जोगना डंड जोगना पसम चढ़ाई है जोगना मुंदी मूड मुड़ाय जोगना सिंगी वाई है अंजन महे नरंजन रही है जोग जुगत एव पाई है गल्ली जोग ना होई एक दिष्ट कर समसर जाने योगी कही है सोई रहाव। जोग ना बाहर मड़ी मसानी जोग ना ताड़ी लाई है जोग ना देद संतर पवे है जोग ना तीर्थ नाई है अंजन महे नरंजन रही है जोग जुगत एव पाई है सतगुर भेटे ता सहसा टूटे धावत वर्ज रहाई है निज चरे सह तुन लाग कर ही परचा पाई है अंजन माहे नरंजन रही है जोग जुग तिव पाई है नानक जीव त्या मर रही है ऐसा जोग कमाई है वाजे बाजो सिंगी वाजे तौ निरपो पद पाई है अंजन माहे नरंजन रही है जोग जुगत तौ पाई है।

ढूंढ ढूंढाई, सतसंगत मिलहारस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मिले हर पाई, सूफी महला चौथा हर कृपा करे मन हर अंग लाए, गुरमुख हर का नाम सुमाए, हर रंग राता मन रंग माने, सदा आनंद रहे दिन राती, पूरे गुर के शब्द सुमाने रहाओ, हर रंग कौ लोचे सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई, मानमुख मुग्ध नर को राहोय, जे सो लोचे रंग न होवे कोय, नदर करे ता सतगुर पावे, नानक हर रस हर रंग समावे, सूफी महला चौथा जेवा हर रस रही अघाए, गुरमुख पीवे सहे सुमाए, हर राजन चाखो जे पाई, तौ कत अंध साध लो भाई, हरहाओ गुरमत रस राखो उरतार, हर रस राते रंग मुरार, मानमुख हर रस चाख्या ना जाए, होमे करे बहुती मिले सजाए, नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण गावे, सूफी महला चौथा तार छेवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद नी जाहर जपतया उत्तम पदवी पाए, पूछो बिदर दासी सुत किसन उतरिया कार्य से जाए, हर की अकथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दूह पूह सब ले जाए, अरहाव अरवदास चुमार उस्तद करे, हर कीर्त निमख एक गाए, पतत जात उत्तम पया चार वर्ण पय पगयाए, नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोभ शीपा कहे बुलाए, खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोडे, हर नाम देव लिया मुख लाए, जितने भगत हर सेवका मुख अड़सर तीर्थ तिन तिलक कढ़ाए, जन नानक तिन को अन दिन परसे, जे कृपा करे हर राय, सूफी महला चौथा तिनी अंतर हर आरा दया, जिनको तुर लिखिया लिखत ललारा, जिनकी बखीली कोई क्या करे, जिनका अंग करे मेरा हर करतारा, हर घर त्याए मन मेरे, मन त्याए हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा, अरहाव तुर भगत जिना कौ बख्सया, हर अमृत पद पंडारा, मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे, तेस हलत पलत मोहकारा, से भगत से सेवका जिन्ना घर नाम प्यारा, इनकी सेवा ते घर पाई है, सिर निंदक कह पवे शारा, जिस कर विरती सोई जाने, जगत गुर नानक पूछ करो बिचारा, चौ पीढ़ी आद जुगाद बखीली कने ना पायो, हर सेवक पाए निस्तारा, सूफी महला चौथा जिथे घर आरा दिए, तिथे घर मित सहाई, गुर कृपा ते हर मन वसे, होर तबित लया न जाई, हर तन संचिए पाई, जे हलत पलत हर होए सखाई, अरहाव सह संगति संघर तन खटिए, होर ते होर तो पाए, हर तन किते ना पाई, हर तने का वापारिया, हर तन तन विहाजे, कच्चे के वापारिये वा के, हर तन लया न जाई, हर तन रतन जवे हर मानक, हर तने नाल अमृत वे लैवत, हर भगती हर लिवलाई, हर तन अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही, हलत पलत हर तने की भगता को मिली वडयाई, हर तन निरपौ सदा सदा अस्तिर है साचा।

तोर लिख पाया, पंच तत्कार तुद सृट सब साजी, कोई सेवा करहो जे किछ कीता होवे, एक ना सतगुर मेल तू बुझावे, एक मनमुख करे से रोवे, हर की वड्याई हो आख ना साका, हो मूर्ख मुगद नीचाण, जन नानक तौ हर बख्श लै मेरे स्वामी, शरणागत पया अजान, राग सूही महला पंजवा, कार पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद बाजी कर जैसे बाजी पाई, नाना रूप तेर दिखलाई, सांक

काम को ऊड़ खलोया, नाम की बेला पै पैसोया, अवसर अपना बुझे ना ए आना, माया मोर अंग लपटाना, अरहाओ लोभ लहर को बिरस फूल बैठा, साजना का दर्शना डीठा, कहू ना समझे अज्ञान गवारा, भौर भौर लपट्यो जंजारा, अरहाओ दिखे नाद कर्ण सुन पीना, हार जस सुनत आसमान कीना, दिखत नाही रे पेघत अंधे, तोड़ जाए झूठे सब तंदे, अरहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करीजे, तार कृपा मुझे साथ संग दीजे, तौ कुछ पाइये जो हो ये रेना, जिसे बुझाए किस नाम

जन्म जन्म के किल विखलाह, मन तन प्राण जियो अरपाह, हार सिमर सिमर मान मोह कुटाह, दीन दयाल करो उत्साह, नानक दास हर शरण समाह, सूही महला पंजवा, बैकुंठ नगर जहां संत वासा, प्राव चरण कमल हिरदमाए निवासा, सुन मन तन तुझ सुख दिख लाव, हर अनक बिंजन तुझ भोग पुंचाव, अरहाव अमृत नाम पुंच मन माही, अचरज साथ ताके बरने ना जाही, लोभ मुआ तृष्णा बुझ ताकी,

जाए, सर्व निरंतर एको जाग, जित जित लाया तित तित को लाग, अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बोलाया तेरा। सूही महला पंजवा, प्राते काल घर नाम उचारी, ईत यूत की ओर सवारी, सदा

मन तन निर्मल सास आओ, आड़ पैर पार ब्रह्म ते आई है, पूर्व लिखित होए ता पाई है, शरण पए जब दीन दयाला, नानक जाचै संतर वाला, सूगी महला पंजवा, घर का काज न जानी रूड़ा, झूठे धंधे रचियो मूड़ा, जित तू लाभ है तित तित लगना, जा तू देह तेरा नाव जपना रहाओ, हर के दास हर से तीरा ते, राम रसायन अन दिन माते, बहा पगर प्रवे आपे काढे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, उधर स्वामी प्रभ कृपा थारे, नानक दास हर शरण द्वारे, सूही महला पंजवा, संत प्रसाद निचल कर पाया, सर्व सुख फिर नहीं डोलाया, गुरु त्याए हर चरण मन चीने, ताते करते अस्तर कीने रहाओ, गुण गावत अच्युत अविनाशी।

तुम ही प्रतपाला जियो पिंड सब तुमरा माला अमृत नाम चले जपनाला नानक जाचे संतर वाला सूही महला पंजवा तिस बिन दूजा अवर ना कोई आपे थम्मे सच्चा सोई हर हर नाम मेरा आधार करण कारण

पूरे पाग प्राप्त होई, अरहाओ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोनी दूता लाई प्रेम शोगा करत कसाई, निर्दय जंत तिरदया न पाई, अनक जन्म बीतियन फरमाई, तरवास न देवे दुत्तर माई, दिन रैन अपना किया पाई, किस दोष न दीजे किरत पवाई, सुन साजन संत जन पाई, चरण सरण नानक गद पाई, अराग सूही

सच तेरी सामग्री, सच तेरा दरबारा, सच तेरे खाजीनिया, सच तेरा पासारा, तेरा रूप अगम है, अरूप तेरा दरसारा, हौ कुरबाणी तेरिया सेवका, जिन हर नाम प्यारा, सभ्य इच्छा पूरिया, जा पाया अगमे अपारा, गुरु नानक मिलया पार ब्रह्म, तेरिया चरणा कौ बलिहार, राग सूही महला पंजवां, कार सतवां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद तेरा भाणा तू है मनाए, जिसनू होए दयाला साई भगत जो तुद पावे, तू सर्ब जिया प्रदपाला, मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी, जो तुद पावे सो प्रवान, मन तन तू है आधारी,

तेरी बख्श निराली जी जन सब तेरे कीते घट घट तु त्याई है तेरी गत मित तू है जाने कुदरत कीम ना पाई है निर्गुण मुगध अजान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पाना सूही महला पंजवा पाल चढ़े घर संत तुम्हारे जिन कर तन घर नामा प्रवान गणी सही ए आए सबल तिना के कामा मेरे राम हर जन के हो बल जाई केसा का कर चबर ठोलावा।

तीलायन हर्षोलयन मिलाए, सच्चा अमर सच्ची पातशाही, सच्चे से तीराते सच्चा सुख सच्ची वड्याई, जिसके से तिन जाते पखा फेरी पानी ठोवा, हर जन के पीसण पीस कमावा, नानक की प्रापास बेनंती तेरे जाना देखण पावा, सूही महला पंजवा पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करणे हारा, चरण तूड़ तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन को बलिहारा, मेरे राम राय ज्यों राखे त्यों रहिए, तुद पावे ता नाम ज पावे, सुख तेरा दिता लहिए रहाओ, मुक्त भुगत जुत तेरी सेवा, जिस तू आप कराए तहां बैकुंठ जय कीर्तन तेरा, तू आपे सरदा लाए, सिमर सिमर सिमर नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मेरे सदगुर दीन दयाला, कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया, नानक कौ प्रापय कृपाला, सदगुर पूरा पाया, तू ही महला पंजवा, तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरह सो मर जाए, दयाल होवे जिस ऊपर करते सो तुद सदा थे आए, मेरे साहेब तू मैं मान निमाणी, अरदास करी प्रभ अपने आगे, सुन सुन जीवा तेरी बाणी, अरहाओ चरण तूड़ तेरे जन की होवा, तेरे दर्शन को बल जाई, अमृत भजन दे उरतारी, तो कृपा ते संग पाई, अंतर की गात तुझ पैसारी, तुझ जेवड़ अवर ना कोई, जिसनु लाए लाए सो लागे, भगत तुहारा सोई, दोए कर जोड़ मांगो एक दाना, साहेब तुठे पावा, सास सास नानक आराध, आठ पैर गुण गावा, सूही महला पंजवा, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, तो दुख कैसा पावे, बोल ना जाने माया।

ना कुल टंग ना मीठे बैना अरहाव छह सीगर कामन करे आवे ता सुहागण जा कंते पावे ना तिस रूप ना रेख्या काई अंत ना साहेब सिमरिया जाई तुरत मत ना ही चतुराई कर किरपा प्रभ लाभ हो पाई खरी सियाणी कंत न पाणी माया लागी परम फुलाणी हो में जाई ता कंत सुमाई तो कामन प्यारे नव निध पाई आनक जन्म बेशरत दुख पाया कर गए लेहो प्रीतम प्रवराया पंत नानक सौ है पी होसी जय पावे प्यारा तय रावेसी सूही महला पहला कर नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कच्चा रंग कसुंभ का थोड़िया दिन चार जियो रिणनावे प्रम फुलिया ठग मुठी कूड़ियार जियो।

वाला सेविए सच्चे स्यों चित लाए जियो रहाओ चारे कुंडा जे पवे बिन भागा तन नाहे जियो अवगण मुठी जे फिरे बदक थाए ना पाहे जियो गुर राखे से उबरे सबदर ते मन माहे जियो चिट्टे जन के कपड़े मैले चित कठोर जियो तेन मुख नाम ना उपजे दूजे व्यापे चोर जियो मूल ना बूझे अपना से पशुआ से टोर जियो नित नित खुशियां मन करे नित नित मंगे सो।

मनना पिजई आत्मैले चित कठोर सप्पै दुध पी आईए अंदर विस निकोर आप करे किसे आखिए आपे बगसनहार गुरसबदी मैल उतर ता सच बनया सी गार सच्चा सहो सच्चे वणजारे उथे कूड़े ना टिकन ओना सच ना पावई दुख ही महे पचन होमे मैला जग फिर मर जमे वारो वार पय किरत कमावना कोई ना मेटन हार संता संगत मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सराही सच मान दर सच्चे सच्चे यार गुर पूरे पूरी मत है।

मन चाओ कनेरा सुन प्रमेर, मैं तेरा परवस। दर्शन देख पई ने केवल, जन्म मरण दुख नस। सगली जोत जाता तू सोई, मिलिया पाए सुफाय। नानक साजन कौ बल जाइए, साच मिले कर आए। कर आएड़े साजना ता तन करी सरसी राम, हार मोहेड़ी साच ठाकुर देख रहंसी राम। गुण संग रहंसी खरी सरसी, जा रवि रंग रते। अवगुण मार गुणी कर छाया, पूरे पुरख विधाते। तस्कर मारवसी पंचायण, अदल करे विचारे। नानक राम नाम निस्तार, गुरमत मिले प्यारे। वार पाएड़ा बालड़िए, आस्था मनसा पूरी राम। फिर रावेड़ी शब्द रली, रव रहया न दूरी राम। प्रा दूर न होई कड़कड़ सोई, तिसकी नार सबाई। आपे रसिया आपे रावे, ज्यो ते दी वड्याई। अमर अडोल अमोल अपारा, गुरपूरे सच पाई है। नानक आपे जोग संजोगी, नदर करे लिवलाई है। फिर उचड़िए मारड़िए, त्यो लोवा सिरता जा राम। हाँ विष्णु पई देह गुणा, अनहद शब्द अगा जा राम। शब्द विचारी करनी सारी, राम नाम निशानों।

साजन आए बुठे कर माही, हर गुण गावे त्रिप्त गाही, हर गुण गाए सदा त्रिप्तासी, फिर भूख न लग गए आए, दय दिस पूज होवे हर जन की, जो हर हर नाम ते आए, नानक हर आपे जोड़ विछोड़े, हर बिन को दूजा नाही, साजन आए बुठे कर माही, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, राग सूही महला तीजा कार तीजा, भगत जना की हर जीव रख है, जुग जुग रखदा आया राम, सो भगत जो गुरमुख होवे, हमे शब्द जलाया राम, हमे शब्द जलाया मेरे घर पाया, जेदी सची बाणी सची भगत करे दिन राती, गुरमुख आख बखाणी भगतां की चाल सची अत निर्मल, नाम सच्चा मन पाया, नानक भगत सोह है दर सचे, जिनी सचो सच कमाया, हर भगतां की जात पत है, भगत हर के नाम सुमाने राम, हर भगत करे विचों आप गवाव है, जिन गुण अवगुण पछाणे राम, गुण अवगुण पछाणे हर नाम खाणे, पए भगत मीठी लागी, अन दिन भगत करे दिन राती, करगी मह बैरागी, भगती राते सदा मन निर्मल, हर जीव वेखै सदा नाले, नानक से भगत हर कै दर साचे, अन दिन नाम सुमाले, मनमुख भगत करे बिन सतगुर, वेण सतगुर भगत।

परम गद पाई पंच मिले सोहाया गया क्रोध ममता तननाठी पाखंड परम गवाया हौ में पीर गई सुख पाया आरोगत पय शरीरा गुरप्रसादी ब्रह्म पछाता नानक गुणी गहीरा मनमुख विछड़ी दूर महल ना पाए बल गई बलराम जीओ अंतर ममता कूर कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जीओ कूड़ कपट कमावे महा दुख पावे वेण सतगुर मगना पाया उजड़ पंथ प्रमे गावारी खिन खिन तक्के खाया आपे दया करे प्रवदाता सदगुर पुरख मिलाए जन्म जन्म के विछड़े जन्म मेले नानक सहज सुभाए आया लगन गणाए हिरदे तन ओ

मन वजी वधाई। जब साजन सुने कर आए, गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए, वर पाया पुरख अगम अगोचर, सद नवतन बाल सिखाई, नानक कृपा करके मिले, विछड़ कदे ना जाई। सूगी महला चौथा, हर पहलड़ी लाव, प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जीओ, बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ हो, पाप तजाया बलराम जीओ, धर्म दृढ़ हो, हर नाम ते आओ, सिमरत नाम दृढ़ाया, सदगुर गुरपूरा आराध हो, तब किलबिख पाप गवाया, सहज आनंद हुआ वडभागी, मन हर हर मीठा लाया, जन कहे नानक लाभ पहली, आरंभ काज रचाया, हर दूजड़ी लाभ सदगुर पुरख मलाया।

नदर प्रभु सत्संग हर मंगल रस रसन रसाए नारक नाम परगासा अंतरतन बीचारे गुरमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया कर चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प सिगार बनाए हर प्रसाते पाया जो प्रभु कहे सोई पर कीजे नानक अंक समाया हर प्रभु काज रित्याया गुरमुख वियाहन आया गुरमुख अर्प आया सातन कंत प्यारी संत जना मिल मंगल गाय हर जीव आप सवारी सुर नर गण गंधर्व मिल आए अपूर्व जंज बनाई नानक प्रपाया मैं सचा ना कदे मरे ना जाई राग सूखी शंत महला चौथा कार तीजा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद आवो संत जनो गुण गावे गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है कर वाजे शब्द कन्हेरे राम शब्द कन्हेरे कर प्रतेरे तू करता सब ताई आयन जपी सदा सालाही साज शब्द लिवलाई अन दिन सहज रहे रंग राता राम नावृत पूजा नानक गुरमुख एक पछाणे अवर ना जाने दूजा सब में रव रहया हो प्रभ अंतर जमी राम गुर शब्द रवे रव रहया हो प्रभ मेरा स्वामी राम प्रभ मेरा स्वामी अंतर जमी कट कट रव्या सोई गुरमत सच पाईए सह समाईए तिस बिन अवर ना कोई सहजे गुण गावा जे प्रभावा आपे लय मिलाए नानक सो प्रभ

प्रीतम हर गुण सुनिए अबनासी राम। सुन सुन यो मन निर्मल होवे कटिए काल की फासी राम। कटिए जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सो ज्ञाना। हर हर जप जपिए दिन राती लागे सहज तिहा।

आपे रखा, आप पिता आप माया। कहो नानक सतगुर बलिहारी, जिन इहो थान सुहाया। कर मंदर हटनाले सोहे, जिस च नाम निवासी राम। संत भगत हर नाम आराधे, कटिए जमकी फासी राम। काटी जम फासी प्रभ अविनाशी, हर हर नाम तिहाए। सगल समग्री पूर्ण होई, मन इच्छे फल पाए। संत सज्जन सुख माणे रलियां, दुख दर्द परम नासी। शब्द सुहारे सतगुर पूरे, नानक सदबल जासी। दात खसम की पूरी होई, नित नित चढ़े सवाई राम। पार

दए दिस पूर रहे आजा स्वामी, कीमत कहन न जाई। कहो नानक सतगुर बलिहारी, जिन अचल नीव रखाई। ज्ञान त्यान पूर्ण परमेश्वर, हर हर कथा ने सुनिए राम। अणगल चोज भगत पा पंजन, अणगल वाजे तुनिए राम। अणगल चुनकारे तत् विचारे, संत गोष्ट नित होवे। हर नाम अराध है, मैल सब कट है। केल बग सगले खोवे, कै जन्म ना मरना आमन जाना। बौड़ ना पाइये जोनिए, नानक गुर परमेश्वर पाया। जिस प्रसाद इश पुनिए, सूही महला पंजवा। संतां के कार्ज आप खलोया, हर कम करामन आया राम। तरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। अमृत जल छाया पूर्ण साध कराया, सगल मनोरथ पूरे। जय जयकार पया जग अंतर, लाते सगल वसूरे। पूर्ण पुरख अच्युत अविनाशी, जस वेद पुराणी गाया। अपना बिरद रखिया परमेश्वर, नानक नाम त्याया। नव निध सिद्ध रिध दीने करते, तोट न आवे काई राम। खात खर्चित बिलशित सुख पाया, करते की दात सुवाई राम। दात सुवाई निखुट न जाई, अंतर जामी पाया। कोट बिघन सगले उठ नठे, दुख न नेड़े आया। सांत सहज आनंद कनेरे, बिरसी पूख सबाई। नानक गुण गावे स्वामी के, अचर जिस वडियाई राम। जिसका कार्य तिन ही किया, मांस क्या वे चारा राम। भगत सोहन हर के गुण गावे, सदा करे जयकारा राम। गुण गाए गोविंद अनद उपजे, साध संगत संग बनी। जिन उदम किया ताल केरा, तिसकी उपमा क्या गनी। आठसर तीर्थ पुन किरिया, महा निर्मल चारा। पतत पावन बिरद स्वामी, नानक शब्द अधारा। गुण निधान मेरा प्रभु करता,

सच रते से निर्मले होमे तज विकारा, जिस तू मिले सो तुद मिले सो ईस त्यारा। श्लोक महला तीजा, सूविगे सूहा सब संसार है, जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में झूठ सा बिरस जाए। ज्यो टेके ना बिरख की छाओ, गुरमुख लालो लाल है जो रंग मजीठ सचड़ाओ। उल्टी सगत सिवे कर आई, मन वस्या हर अमृत नाओ। नानक बरिहारी गुर अपने, जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा, सूहा रंग विकार है तंतन पाया जाए। इस लेंदे बिलम न हो वई, रंड बैठी दूजे पाए। मुंद एयानी दुमनी सूहे वेस लुभाए। शब्द सच्चे रंग लाल कर, पाए पाए सीगार बनाए। नानक सदा सुहागणी, जे चलन सतगुर पाए पौड़ी। आपे आप उपायन आप कीमत पाई, सीधा अंत न जापई गुर शब्द बुझाई। माया मोह गुबार है दूजे परमाई, मानमक ठौर ना।

पौड़ी सच्चा अमर चलायून कर सतपुरमान सदा निचल रब रहा सो पुरख सुजान गुर प्रसादी सेवीए सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान आगम अगोचर अलख है गुरमखर जान श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका पीतर तरिया आन खोटे खरे परखियन साहिब कै दीवान महला पहला नावन चले तीर्थी मन खोटे तन चोर एक पाव लथी नात्या दोए पा चढ़िए सहोर बार तोती तूमड़ी अंदर विस निकोर साध पले अणनात्या चोर से चोरा चोर पौड़ी आप युगम चलाएगा जगतंदे लाया एक आपे ही आप लायन गुरते सुख पाया दैत ओ मन तामद गुर ठाक रखाया नावे नू सब लोच दी गुरमती पाया तुर लिखया मेट न सकी है जो हर लिख पाया श्लोक महला पहला दोए दीवे चौदे हट नाले जेते जीते ते वणजारे खुले हट होआ व्यापार जो पहुंचे सो चलन हार धर्म दलाल पाए निशान नानक नाम लहा परवान कर आए वजी वाधाई सच नाम की मिली वड्याई महला पहला राती होवन कालियां सुपेदा सेवन द्यो बग्गा तपे कणा कालिया काले वन अंधे अगली बारे मूर्ख अंध ज्ञान नानक नदरी बारे तबे न पावे मान पौड़ी काया कोटर तय हर सच्चे आपे एक दूजे पाए खुआयन हौमे विच व्यापे इहो मानस जन्म दुलंब सा मनमुख संतापे जिस आप बुझाए सो बुझसी जिस सतगुर थापे सब जग खेल अरचायून सा वरते आपे श्लोक महला पहला चोरां जारां रंडियां कुटनियां दी बाण वे दीना की दोस्ती वे दीना का खान सिफती सारना जाननी सदा वसे शैतान गद्धों चंदन खोलिए पी साहू स्यों पान नानक कूड़ा कत्ते है कूड़ा तणिए तान कूड़ा कपड़ कछ

एक दाते एक मंगते, नाम तेरा प्रवान, नाग जिन्नी सुन के मनिया, हों तिना मिट्टों कुर्बान पौड़ी, माया मोह सब कूड़ गए, कूड़ो होए गया, हमे झगड़ा पाए ऊन झगड़े जग मोया, गुरमुख झगड़ चुकाए ऊन इको रब रहा, तवे आत्म राम पछाणिया भौजल तर गया, जोत सुमाणी जोत विच हर नाम समया, महला पहला सदगुर भीखिया दे मैं तू समरथ दा तार, होमे गर्भ निवारिए काम क्रोध अहंकार, लब लोभ पर जालिए नाम मिले आधार, अहिंस नवतन निर्मला मैला कभू ना होए, नानक ए बद छुट्टी है नदर तेरी सुख होए, महला पहला इको कंत सबाइया जिती दर खड़िया, नानक कंते रतिया पुछे बातड़िया, महला पहला सबे कंते रतिया।

पाई, अचिंत नाम बसया मन आई, होमे माया शब्द जलाई, दर सच गुरते शोभा पाई, जगदीश से वो मैं अवर ना काजा, अन दिन अंध होवे मन मेरा, गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ, मन की प्रतीत मन ते पाई, पूरे गुरते शब्द बुझाई, जीवन मरण को समसर वेख, बौड़ ना मरे ना जम पिख, कर ही मैं सब कोट निधान, सदगुर दिखाए गया अभिमान, सदगी लागा सहज ध्यान, अनदिन गावे एको नाम, इस जुग में वड्याई पाई, पूरे गुरते नाम ते आई, जय देखा तै रहा समाई, सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई, पूरे पाग गुर पूरा पाया, अंतर नाम निधान दिखाया, गुर का शब्द अत मीठा लाया, नानक तृष्ण बुझी मन तन सुख पाया, अराग बलावल महला चौथा, कार तीजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद उद्यम मत प्रभ अंतर जामी, ज्यो प्रेरे त्यों करना, ज्यो नटुआ तंत वजाए तंती, त्यों वाजे जंत जना, जप मन आराम नाम रसना, मस्तक लिखत लिखे गुर पाया, हर हिरदे हर बसना रहाओ, माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी, रख ले वो जने अपना, ज्यो प्रहलाद हरनास ग्रस्यो, हर रख्यो हर सरना, कामन कमन की गात मित कहिए, हर की गे पतत पवन्ना, ओ टोवे टोर हाथ चम चमरे, हार उतरे ओ परे ओ सरना, प्रभ दीन दयाल भगत पवतारन, हम पापी राख पपना, हर दासन दास दास हम करियो, जन नानक दास दासन्ना, बलावल महला चौथा, हम मूर्ख मुग्ध अज्ञानमती, शरणागत पुरख अजन्मा, कर कृपा रख लेवो।

ही पुजारी आप ही देवा, आपे जोग आप ही जूता, नाग के प्रभ सद ही मुक्ता। बिलावल महला पंजवा, आप उपावन आप सधरना, आप करामन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभो आप ही जरना। अरगाओ आप ही मस्त, आप ही बोलना, आप ही अशलना जाई शलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही काट काट आप अलिपना, आप पे अवगत आप संगरचना। कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, फूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुरवड़ भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। रघाव काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुसु करत जन्म फुनमुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, आगन सागर बूढ़त संसारा। नानक बां पकर सदगुर निस्तारा। बिलावल महला पंजवा, तान मन तान अर्पो सब अपना, कामन सुमत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रामंगन, तू पेखत सोभा मेरे आंगन। रखाओ आनक जुत कर बहुत बिचारो, साध संग इस मने उधारो, मत बुसुरत नही चतराई, ता मिलिए जान लय मिलाई, नयन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सबल सो आया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रब रहया प्रसम में आपे, हार जप रसना दुख ना व्यापे। रखाओ तिखा भूख बो तप्त व्यापया, शीतल पय हर हर जस जापया, कोट जदन संतोख न पाया, मान तृप्ताना हर गुण गाया, देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा, गुरपूरा बड़ भागी पाईये, मिल साधु हर नाम त्याईये, पार ब्रह्म प्रो तेरी सरना, केल भी काटे फज गुर के चरना। रखाओ आवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग हुए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे।

जो निंद करे इन ग्रहण की इस आगे ही मारे करतार। नानक दास ता की शरणाई जा को शब्द अखंड अपार।

अवसर दुलभाया, अंतर्यामी आप प्रभु सब करे कराया, पद पुनीत कणे करे ठाकुर बिरदाया, मद कूलो मानुख जान माया परमाया, नानक तिस पत राखसी जो प्रप है राया, बिलावल मोहल्ला पंजवा माटी तेजन साजया, कर दुर्लभ देखे अनक शिदर मन में टके, निर्मल दृष्टे हे क्यों बिस्तरे प्रा मने ते, जिसके गुण एह प्राप तज रचे जे आन स्यो सो रलिगे खेहे रघाओ, सिमरो सिमरो सास सास मत बिलम करेह, छोड़ प्रपंच प्रसुमरचो तज कूड़े नेह, जिन अनक एक बहु रंग किए है होसी एह, कर सेवा तस पार ब्रह्म गुरते मत लेह, ऊचे ते ऊचा वड्डा सब संग बरनेह, दास दास को दासरा नानक कर लेह, बिलावल मोहल्ला पंजवा एक टेक गोविंद की त्यागी अन आस, सब ऊपर सुमरथ प्रभ पूर्ण गुण तास, जनका नाम आधार है प्रसरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे रखाओ, आप रखे आप देवसी आपे प्रतपारे, दीन दयाल कृपा निधे सास सास संहारे, करणहार जो कर रहा साई वड्याई, गुर पूरे उपदेसे आ सुख खसम रजाई, चिंत अंदेसा गणत ताज जन हुकुम पछाता, न मिलसे न छोड़ जाए,

अंध कुब मैं गलत थे ताडे देखा थे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जिन पेड़त होवत सुखी जी दान देन रखाओ परा पूर्वला लिखया मिलया अब आए बस्त संग हर साध कै पूर्ण आसाए पैबिर से त्यो लोग के पाए सुख थान दया करी समरथ गुर बसिया मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करण कारण समरथ प्रभ हर अगम अपार बलावल मुहला पनवा सोई मलीन दीनहीन जिस प्रभ सराना करने हार ना बूझई आप गने बेगाना दुख तदे जद विसरे सो प्रचित आए संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए रखाओ ऊचे ते नीचा करे नीच खिन में थापे कीमत कही ना जाइए ठाकुर प्रतापे पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुबने का सुबना पया संग चलिया कमाया करण कारण समरथ प्रभ तेरी शरण आई हर दिन सरायण नानक जपे साध सद बल जाई बलावल मुहला पंजवा जल टोवो ए शीस कर पग पखलाओ बार जाओ लख बेरिया दर्स पेख जीवावो करो मनोरथ मने माहे अपने प्रवते पावो दियो सूनी साध के बीजन ठो लावो रगाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पी लावो वारस में सांत तृप्त होए बिखे जलन बुझाओ जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो करो नमस्कार भगत जान तूर मुख लावो ऊठत बैठत जपो नाम क्यों कर्म कमावो नानक की प्रा बेनती हर शरण समाओ बिलावल मुहला पंजवा इहो सागर सोई तरह जो हर गुण गाए साध संगत कै संग वसै वडभागी पाए सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जने आखी प्रगट पई सब लो मैं सेवक की राखी रखाओ आगन सागर ते काढ़या प्रभ जलन बुझाई अमृत नाम जल संचिया गुर पए सखाई जन्म मरण दुख काटया तो का थान पाया काटी सिलक प्रम हो की अपने प्रापाया मत कोई जानो अवर कश सब प्रभ के हाथ सर्ब सुख नानक पाए संग संतन साथ बिलावल मुहला पंजवा बंधन काटे आप प्रभ हुआ कृपाल दीन दयाल प्रपार ब्रह्म

रोग रगाओ औगध हर का नाम है जित रोग ना व्यापै साध संग मन तन हित फिर दुख ना जाप हर हर हर हर जापिए अंतर लिवलाई केल उत्तरे शुद्ध होए साधु शरणाई सोनत जपत हर नाम जस ताकि दूर बिलाई महामंत्र नानक कथ हर के गुण गाई बलावल महला पंजवा पय ते उपजे भगत प्रभ अंतर हुए शांत नाम जपत गोविंद का बिरसे परम प्रांत गुरपुरा जिस फिटिया ताके सुख परवेश।

जी जंत सो प्रसन्न भए देख प्रताप करज उतारिया सतगुरु कर आहर आप खात खर्चित निवत रहे गुरु शब्द अखूट।

भगत आराध्य एक रंग गोविंद गोपाल, राम नाम तन संचया जाका नहीं सुमार, शरण परे प्रभु तेरिया प्रभु की वडियाई, नानक अंत ना पाईए बेअंत गुसाई। बिलावल मोहल्ला पंजवा, सिमर सिमर पूर्ण प्रभु कार्ज पैरास, करतारपुर करता वसै संतन कै पास रखाओ, बिघन न को लागता गुर पै अरदास, रखवाला गोविंद राय भगतन की रास, तोट न आवे कदे मूल पूर्ण पंडार, चरण कवन मन तन बसे प्रभ पगम अपार, बस्त कमावत सब सुखी इस ऊन ना दिस, संत प्रसाद पेटे प्रभु पूर्ण जगदीश, जय जयकार सभे करे सजथान सुह, जप नानक नाम निदान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल मोहल्ला पंजवा, हर हर हर आराधिये होइए आरोग, रामचंद की लिस्ट का जिन मारिया रोग, रघाव गुर पूरा हर जापिए नित कीचे भोग, साध संगत कै वारणे मिलया संयोग, जे सिमरत सुख पाईए।

को नास, चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास। कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग कड़ सास रहाओ, मात पिता बंदब तू है तू सर्ब निवास। नानक प्रभ शरणागति जा को निर्मल जास, बिलावल मोहल्ला पंजवा सर्ब सिद्ध हर गा।

प्रमिट गया रविया नित राम। साध जना के संग बस्त सुख सहज विश्राम। साई कड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रखाओ। पलट पए संसार में फिरते पए नाम। नांग ते शरणागति काट काट सब जान। बिलावल मोहल्ला पंजवां रोग मिटाया आव प्रभ। उपजया सुख सांत वड प्रताप अजज रूप। हर कीनी दात गुर गोविंद कृपा करी। रख्या मेरा भाई

खोए खोए खोई हो, मोको सतगुर मंत्र दरड़ाए। अतुल अतुल अतुल न तुलिए, भगत वशल कृपाए, जो

कहो नानक ऊचो ऊचा बलावल महला पंजवा बिन हर कामना आवत हे जा सो राच माज तुम लागे मोह मोहनी मोहावत हे रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिने मैं जावत हे उर जरे इंद्री रस प्रेरे हो बिखे ठगोरी कावत हे तिरण को मंदर साज सवार हो पावक तले जरावत हे ऐसे गढ़ में ऐठ हठीलो फूल फूल क्या पावत हे पंच दूत मोड़ पर ठाडे केस गए फेरावत हे दिटन आवे अंध अज्ञानी सोए रहो मदमावत हे जाल पसार चोग बिस्तारी पंखी जूफा हावत हे कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख ते आवत हे बिलावल महला पंजवा हार हर नाम अपार अमोली प्राण प्यारो मने अधारो चीत चितवो जैसे पान तंबोली रखाओ सहज समायो गुरे बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रेम मुख लागो जोवड़ पागो सुहाग हमारो कतो ना डोली रूप ना तूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मोली कहो नानक प्रेरवि सुहागन आतनी की मेरी बनी खटोली बिलावल महला पंजवा गोविंद गोविंद गोविंद मई जब ते पेटे साध दयारा तब ते दुरमत दूर पई रखाओ पूर्ण पूरे हो संपूर्ण तीतल सांत दयाल दई काम क्रोध न अहंकारा संते हुए सगल खई सत संतोख दया धर्म सुच संतन ते यो मंत लई कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन को सगली सोज पई बिलावल महला पंजवा क्या हम जी जंत बेचारे वर्ण न साके एक

शरण परे उहर चरण गए प्रभ, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल मोहल्ला पंजवां, आगम रूप अवनाशी करता, पातत पवित एक निमख जपाइए। आचरज सुनियो प्रात पेटले, संत चरण चरण मन लाइए। एत विधिये कित संजम पाइए, कौ सुरजन कै जूती त्याइए। रघाव जो मानुख मानुख की सेवा, ओ तिसकी लई लई फुन जाइए। नानक सरन सरन सुख सागर, मुए टेक तेरो एक नाइए। बलावल महला पंजवा, संत सरन संत टहल करी, कंद बंद आर सगल जंजारो, आवर काज ते छूट परी। रघाव सुख सहज आर कनु आनंदा, गुरते पायो नाम हरी। ऐसो हरस बरन सको, गुरपूरे मेरी उल्ट तरी। पेख्यो मून सबके संगे, ऊन न काहू सगल परी। पूर्ण पूरयो कृपा निध, को नानक मेरी पूरी परी। बलावल मोहल्ला पंजवां,

पर पावे एकत सुनत सदा संघरे रखाओ काज भ्याजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग करे होमन तौरा अनहोमन मीठा दिखिया मैं लपटाए जरे अंध कूप मैं परे हो प्राणी परम गुबार मुह बंद परे कहो नानक प्रभुत दयारा गुर पीटै काढ़े वहां फरे बिलावल महला पंजवा मन तरसना हर चीना पै आनंदा मिटे अंदेसे।

करण गहे आमन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपो होए पजो जगदीश इओ पदार्थ वड़ भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रदाते निर्मल जस नानक दास कहे बिलावल महला पंजवा सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ कही ना पहुंचे सुलही होए मुआ ना पाक रखाओ काड कुठार खसम सिर काटिया खिन में होए गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचया जिन रचिया तिन दीना ताक पुत्र मीत तन किशु न रहो तो छोड़ गया सा पाई साक कहो नानक तिस प्रभ लिहारी जिन जनका कीनो पूर्ण वाक बलावल मोहला पनवा पूरे गुर की पूरी सेव

बनायो आप अपने सेवक की आपे रख प्रभ मेरे को वड प्रताप पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर वस कीने जिन सगले जंत चरण कमल नानक शरणाई आराम नाम जप निर्मल मंत्र।

मूला नस्यो प्रीत बने अरहाओ तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरैन मन माहे बस्त है तू कर कृपा प्रवे अपनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को अकथ कथा जा की बात सुनी जन नानक दासन दास कहित है मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी बिलावल महला पंजवा हर के चरण जप जाओ कुर्बान गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर ताका हिरदे तर मन ध्यान रखाओ सिमर सिमर सिमर सुखदाता जाका किया सगल जहान रसना रवो एक नारायण ताती दरगे पावो मान साधु संग प्राप्त जाको तिन्ही पाया इहो निधान गावो गुण कीर्त नित स्वामी कर कृपा नानक दीजे दान बिलावल महला पंजवा राख लिगे सतगुर की शरण जय जयकार हो आज अंतर पार ब्रह्म तेरो तारण तरण रखाओ विश्वम पर पूर्ण सुखदत्त सगल समग्री पोखण परण थान सनंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करण आद जुगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरण।

आपे मेल लए, जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। तज अभमान अरचिंत बैरानी साधे शरण पए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खय। महामुख अजान अज्ञानी रखे थार दए, कहो नानक गुरपुरा फिट्यो आमन जान रहे। बिलावल मोहल्ला पंजवां, जीवो नाम सुनी जो सो प्रसन्न पए गुरपुरे, ता मेरी आस पुन्नी रहाओ। पीर गई बंदी मन तीरा मोयो अंध तुनी, उबजो चाओ मिलन प्रापरीतम रहन ना जाए खिनी। अनक भगत अनक जन तारे तिमरे अनक मुनि, अंधले टेक निर्थन तन पायो। प्रभ नानक अनक गुणी।

रूप त्यावो नानक द्वारे आयो तौ मैं लालन पायोरी। मोहन रूप दिखावे आ मोहि नींद सुहावे ता मेरी तिखा बुझानी आव मैं।

दर्शन पावत हे। अराचो नाथ की सहाई संतना आप चरण गहे रखाओ। आहे मन अवरना भावे चरणावे चरणावे उलझ्यो आलम करंद कमल ज्यो आनस नहीं चाहे। एके हर लाहे अनते टूटिए रिखते छूटिए मान हरस कूटिए संग साधु उल्टिए अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण हे। राग बिलावल महला नावा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुखरता हर नाम पछानो अजामल गण का जे सिमरत मुक्त पय जी जानो। रघाव गज की त्रास मिट्टी छिन्हू मैं जग ही राम बखानो नारद कैत सुंद त्रु बारक भजन माए लबटानो अचल अमर निरपय पद पायो जगत जाए हैरानो। नानक कहत भगत रशक हर निकट तहे तुम मानो बिलावल महला नामा हर के नाम बिना दुख पावे भगत बिना सहसा न चूके गुर ए पेद बतावे। रघाव कहा पयो तीर्थ व्रत किए आराम सर नहीं आवे जोग जग निफलते मानो जो प्रजस बसरावे।

आप ना बूझे लोक बजावे मन का अंधा अंध कुमावे तार कर महल ठौर कैसे पावे हर जियो सेव गे अंतर जामी कट कट अंतर जिकी जोत समानी तिस नाल क्या चले पै नामी साचा नाम साचे शब्द जाने आपे आप मिले चूके अभमाने गुरमुख नाम सदा सदा वखाने सदगुर सेवे दूजी दुरमत जाई औगण काट पापा मत खाई कंचन काया ज्योति ज्योत समाई सदगुर मिले वड्डी वडियाई दुख काट हिरदे नाम साई नाम रते सदा सुख पाई गुरमत मान्या करणी सार गुरमत मान्या मुख द्वार नानक गुरमत मान्या परवार है साधार बिलावल महला चौथा अष्टपदियां तार ग्यारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आपे आप खाए हो मेटे आन दिन हरस गीत गवैया गुरमुख परचय कंचन काया निरपौ ज्योति ज्योत मिलैया मैं हर हर नाम आधार रमैया खेन पल रहे न सको बिन नावे गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रखाओ ए गृह द्वार है जाके अहे निस तस्कर पांच चोर लगैया धर्म अर्थ सब हिर ले जावे मानमुख अंधले खबर न पैया कंचन कोट बहुमानक भरिया जागे ज्ञान तत् लिवलैया तस्कर हेरू आए लोकाने गुर के शब्द पकड़ बंद पैया हर हर नाम पोत भोयता खेवट शब्द गुर पार लंघैया जम जागाती नेड़ न आवे ना को तस्कर चोर लगैया हर गुण गावे सदा दिन राती मैं हरस कहते अंत न लहिया गुरमुख मनवा इकत कर आवे मिलो गोपाल निशान बजैया नैनी देख दर्श मन तृप्त धर्म बाणी गुर शब्द सुनैया सुन सुन आत्म देव है पीने रस रस राम गोपाल रवैया त्रै गुण माया मोहे व्यापे तुरिया गुण है गुरमुख लहिया एक दृट सब सम कर जाने नदरी आवे सब ब्रह्म पसरैया राम नाम है ज्योत सबाई गुरमुख आपे अलख लखैया नानक दीन दयाल पय है भगत पाए हर नाम समैया बिलावल महला चौथा हर हर नाम शीतल जल प्याव हो हर चंदन वास सुगंध गंधैया मिल सत्संगत परम पद पाया मेहरड पलास संघर भुइया जप जगन्नाथ जगदीश गुसैया शरण परे से जन उभरे जो प्रहलाद उधार सुमैया रखाओ पार अठारे मैं चंदन उत्तम चंदन निकट सब चंदन हुई सागत कूड़े उब सुख हुए मन अभमान विछड़ दूर गईया हर गत मित करता आपे जाने साबित हर घर आप बनैया जिस सदगुर पेटे तो कंचन होवे जो तो लिखिया सो मिटे ना मिटैया रतन पदार्थ गुरमत पावे सागर भगत पंडार खुलैया गोर चरणे एक सरदा उपजी मैं हर गुण कहते तृप्त ना पैया परम बैराग नित नित हर त्याय मैं हर गुण कहते पाम नहीं कैया बार बार खिन खिन पल कहिए आर पार ना पावे परे परैया शास्त्र वेद पुराण पुकारे धर्म करो खट कर्म दरड़ैया मन मुख पाखंड परम विभूते लोभ लहर नाभ पार बुड़ैया नाम जपो नामे गल पावो सिमरत शास्त्र नाम दरड़ैया होमे जाय तन निर्मल होवे गुरमुख परचे परम पद पैया इहो जग वर्ण रूप सब तेरा जित लावे से कर्म कमैया नानक जंत जाए वाजे जित फावे तित रहे चलैया बिलावल महला चौथा गुरमुख अगम अगोचर त्याया हौ बल बल सतगुर सतपुरखैया राम नाम मेरे प्राण मसाए सतगुर परस हर नाम समैया जन कीटे हर नाम टकैया सतगुर की तर लागा जाव गुर कृपा ते हर दर लहिया रखाओ यो शरीर कर्म की धरती गुरमुख मत मत तत कढ़ैया लाल जवे हर नाम परगासया पांडे पाओ पवे तित अय्या दासन दास दास होई रहिए योजन राम भगत निज पैया
मन बुद्ध अर्पत धरो गुर आगे गुर प्रसादी मैं आकाथ कसैया मन मुख माया मोहे आपे इउ मंत्रसना जल तत खैया गुरमत नाम अमृत जल पाया अगन बुझी गुर शब्द बुझैया इउ मन नाटे सदगुर आगे अनगल शब्द तुन तूर बजैया हर उस्त करे दिन राती रख रख चरण हर ताल पूरैया हर की रंग रता मन गावे रस रसाल रस शब्द रवैया निज करताल चोए अत निर्मल जिन पिया तिनही सुख लैया मन हर कर्म करे अभमानी जो बालक बालू कर उसरैया आवे लहर सुमंद सागर की खिन मैं पिन पिन टह पैया हर सर सागर हर है आपे यो जग है सब खेल खेलैया जो जल तरंग जल जले समावे नानक आपे आप रमैया बिलावल महला चौथा सदगुर परचे मन मुंदरा पाई गुर का शब्द तन पसम दरड़ैया अमर पिंड पै साधु संग जन्म मरण दो मिट गईया मेरे मन साध संगत मिल रहैया कृपा करो मसूदन माधो मैं खिन खिन साधु चरण पखैया रखाओ तजे ग्रस्त पया बनवासी एकन मनुआ टिके ना टकैया तावत ताए तदे कर आवे हर घर साधु शरण पवैया तिया पूत छोड़ सन्यासी आसा आस मन बहुत करैया आसा आस करे नहीं बूझे गुर कै शब्द नराज सुख लैया उबजी तर्क दिगंबर हुआ मन दहे दिस चल चल गमन करैया पर पवन करे बूझे नहीं तृष्णा मिल संग साथ दया कर लैया आसन सिद्ध सिखे बहुते रे मन मांगे रिद सिद्ध चेटक चेटकैया तृप्त संतो मन सांतन आवे मेरे साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया अंडज जेरज सेत उत्पुज तवर्ण रूप जीजन तो पैया साधु शरण परे सो उबरे खत्री ब्राह्मण सूद वैस चंडाल चंडैया नामा जय दियो कंबीर त्रिलोचन औजात रविदास चमियार चमैया जो जो मिले साधु जन संगत तन थना जट सैन मिलया हर दैया संत जना की हर पैज रखाई

अवर के जाने को पीर परैया, राम गुर मोहन मोहे मन लैया, हऊ आकल विकल पई गुर देखे, हौन लोड पोड होए पैया रहाओ, हौ निरखत फिरो सब देह दिसंतर, मैं प्र देखन को बहुत मन चैया, मन तन काढ दियो गुर आगे, जे हर प्र मार्ग पंथ दिखैया, कोई आण संदेसा दे प्रव केरा, जित अंतर मन तन मीठ लगैया, मस्तक काढ दियो चरणा तल, जो हर प्र मेले मेल मलैया, चाल चल सगी हम प्र प्रबुद्ध, गुण कामन कर हर प्रभ लैया, भगत वत्सल उवा को नाम कहित है, शरण प्रभु तिस पाछे पैया, किमा सीगार करे प्रखुशियां, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया, रस रस पो करे प्रा मेरा, हम तिस आगे जियो कट कट पैया, हर हर हार कंठ गए बनया, मन मोती चूर वड़ गहन गहनैया, हर घर श्रद्धा से वशाई, प्र छोड़ न सके बहुत मन पैया, तय प्रभ आवर आवर किस कीजे, ता बाद सीगार फोकट फोकटैया, कियो सीगार मिलन कहताई, प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया, हम तेरी तू अगमुख साई, क्या हम करे तेरे बस पैया, दया दीन करो रख लेवो, नानक हर गुर शरण समैया, बिलावल मोहल्ला चौथा, मैं मन तन प्रेम अगम ठाकुर का, खिन खिन श्रद्धा मन बहुत उठैया, गुर देखे श्रद्धा मन पूरी, क्यों चातरक प्रयो प्रयो बूंद मुख पैया, मेल मिल सखी हर कथा सुनैया, सतगुर दया करे प्रा मेले, मैं तस आगे सिर कट कट पैया रहाओ, रोम रोम मन तन एक बेदन, मैं प्र देखे बिन नींद ना पैया, वैदक नाटक देख पोलाने, मैं हिरदे मन तन प्रेम पीर लगैया, हाउ खिन पल रहे न सको बिन प्रीतम, ज्यो बिन अमल अमली मर गईया, जिन को प्यास होए प्रभ केरी, तिन अवर न पावे बिन हर को दुईया, कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावे, हाउ तस विट्टो बाल बाल कुम गईया, अनेक जन्म के बिछड़े जन मेले, जां सत सत सतगुरु शरण पवैया, सेज एक एको प्रभ ठाकुर, महल न पावे मन मुख परमैया, गुर गुर करत शरण जी आवे, प्रब आए मिले कन टील न पैया, कार कर क्रिया चार बधाए, मन पाखंड कर्म कपट लू भैया, बेसवा कह कर बेटा जन्मया, पिता ताए क्या नाम सवैया, पूर्व जन्म भगत कर आए, गुर हर घर भगत जमैया, भगत भगत करते घर पाया, जा हर घर नाम समैया, प्रभ आन आन मेहंदी पीसाई, आपे कोल कोल अंग लैया, जिन को ठाकुर कृपा थारी, बाह पकर नानक कड़ लैया, राग बिलावल महला पंजवा, अष्टपदी कर बारवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उपमा जातना कही मेरे प्रभ की, उपमा जातना कही, तज आन शरण गही रखाओ, प्रभ चरण कमल अपार, हौ जाओ सद बलिहार, मन प्रीत लागी ताहे, तज आन कते ना जाहे, हर नाम रसना कहेन, मल पाप कल मल दहेन, चढ़ नाव संत उधार।

फलोहार पिए फल जाए, रस खाए साध गुआए, कूड़े लालच लपटे लपटाए, टूटे गुरमुख साज कमाए, दुआ दस मुंदरा मन अवधूता, ऐन से जाके कवे न सूता, जागत जाग रहे लिवलाए, गुर परचित काल न खाए, अतीत पै मारे बैराई, परणत नानक तय लिवलाई, दुआसी दया दान कर जाने, बार जा तो पीतर आने, बरती बरत रहे ने काम, अजपा जाप जपे मुख नाम, तीन पौन में एको जाने, साव सु संजम साज बिछाणे, तेरस तरवर समुंद किनारे, अमृत मूल शिखर लिवतारे, डाडर मरे ना बूढ़े कोए, निडर बूढ़ मरे पद कोए, डर में कर कर में डर जाने, तख्त निवास सच मन पाने, चौदस चौथे थावे लय पावे, रायस तामस सदकाल समावे, ससियर कह कर सूर समावे, योग जूत की कीमत पावे, चौदस पवन पाताल समाए, खंड ब्रह्मंड रहया लिवलाए, अमावस्या चंद गुप्त गैनार, बूझो ज्ञानी शब्द विचार, ससिय गगन जोत त्यो लोई, कर कर वेखे करता सोई, गुरते दिसे तो तिसगी माहे, मनमुख पूले आवे जाहे, तार दर थाप फिर तान सुहावे, आप छाणे जा सतगुर पावे, जय आसा ते बिनस बनासा, फूटे खपर दुबदा मनसा।

लाडले लाड लड़ाए सब में मिर्ख मारी हो गते पीत चितवो मिट अंधारे जो आस चकवीदन चरे नांग पैम पै प्रसंग मेली मछली नीर ना विसर तन तन हमारे भाग कर आया फिर मेरा तुही तो बंक द्वार सगला बनहरा हर हरा स्वामी सुखे गामी अंध मंगल रस खणा नवल नवतन नह उबाला कम रसना गुण फना मेरी सेज सोही देख मोही सगल सहसा दुख हर नानक पयम पै मेरी आस पूरी मिले स्वामी अपरंपरा बिलावल महला पंजवा शांत मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक सुंदर सांत दयाल प्रभ सर्व सुखानंद पियो सुख सागर प्रापेटे है नानक सुखी हो त्यो जियो शांत सुख सागर प्रापाई है जब हो वे भागो राम मानन मान मई है आरे चरणी लागो राम तोड़ श्याम चातरी दुरमत बुद्ध त्यागो राम नानक पो शरणाई राम राय फिर होए सुहागो राम तो प्रभ तज कद लागी है जिस बिन मर जाय गे राम लाज न आवे अज्ञान मती दुर्जन बिरमाई गे राम पतत पावन प्रभ त्याग करे तो कत ठहराई गे राम नानक भगत पाओ कर दयाल की जीवन पद पाए गे राम श्री गोपाल ना उच्चर है बल गई है दो चार नरसना राम प्रभ भगत वशल ने सेव ही ताया काक ग्रसना राम प्रमो ही दुख ना जान ही पुरजो नी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना बिस्ता क्रिम पसना राम लाए बिरो भगवंत संगे होए मिल बैरागन राम चंदन चीर सुगंध रसा होमे बिख त्यागन राम ईत ऊत न डोलिए हर सेवा जागन राम नानक जे प्रपाया अपना ता अटल सुहागन राम बिलावल महला पंजवा हर खो जोवड़ पागियो मिल साधु संगे राम गुण गोविंद सदगाविये पार ब्रह्म के रंगे राम तो प्रसद ही सेविये पाइगे फल मंगे राम नानक प्रसरणागति जब अंत तरंगे राम एक तल प्रभु ना विसर जिन सब कुछ दीना राम वड़पागी मेलावड़ा गुरमु पिर चीना राम बहां पगड़ तमते काढ़िया कर अपना लीना राम नाम जबत नानक जीवे शीतल मनसीना।

तू सर्व व्यापी तुम समसर नहीं दयाल मोहे समसर पापी बिलावल नेत उठ कोरी गागर अन्न लीप्त जियो गयो ताना बाना कछु ना सूझे हार हर रस लपटो हमारे कुल कौने राम कहो जब की माला लई निपूते तब ते सुख ना पयो रखाओ सुनो जिठानी सुनो दरानी अचरज एक पयो सात सूत इन मुंडिये खोए क्यों मुंडिया क्यों नाम होयो सर्व सुखा का एक कर स्वामी तो गुरु राम दयो संत प्रहलाद की पैज न राखी हर नाश नख बिदरयो करके देव किदर की छोड़ी गुर को शब्द लयो कहेत कबीर सगल पाप खंडन संत है लय उधरयो बिलावल को हर समान नहीं राजा ए पूबत सब दिस चार के झूठे करत दिवाजा रखाओ तेरो जन होए सोए कद डोले तीन पवन पर साजा हाथ पसार सके को जन को बोल सके ना अंदाजा।

राख ले हो हम ते बिगरी, सील तर्म जा भगत न कीनी, हों अभमान टेढ़ पगरी रहाओ। आमर जान संची एक आया, ए मिथ्या काची गगरी, जिने नवाज साझम किए, इसे बसार अवर लगरी, चंदक तोये साध नहीं कई हो, तन परे तुमरी पगरी, कहे कबीर ए बिनती सुनियो, मत का लहो जमकी खबरी बिलावल, दर मादे ठाडे दरबार, कुछ मिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल के वार रखाओ, तुम तन तनी उदार त्यागी, श्रवणन सुनियत तो जस तुमार, मांगो कहे रंग सब देखो, तुम ही ते मेरो निस्तार, जय देव नामा बेप सुदामा, इनको कृपा पई है अपार। कहे कबीर तुम समर्थ दाते, चार पदार्थ देत ना बार बिलावल, डंडा मुंद्रा खिंता आधारी, प्रम के पाए पवे पेहतारी, आसन पवन दूर कर बवरे, छोड़ कपट नित हर पज बवरे रघाओ, जे तू जाचे तू तिर पवन भोगी, कहे कबीर के सौ जग जोगी बिलावल। इन माया जगदीश गुसाई, तुमरे चरण बिसारे, किंचित प्रीत न उपजे जन को, जन कहां करे बेचारे रघाओ, त्रिग तान त्रिग तान, त्रिग ए माया, त्रिग त्रिग मत बुध फन्नी, इस माया को दृढ़ कर रखो, बंदे आप चन्नी, क्या खेती क्या लेवा देई, परपंच चूड़ गुमाना, कहे कबीर ते अंत भगूते, आया काल निदाना बिलावल, शरीर सरोवर पीतरे, आछे कमल अनूप, परम जोत पर खोतमो, जा के रेखना रूप, रे मन हर पाए प्रम तजो, जग जीवन राम रखाओ, आवत कछु ना दिसई, न दिसे जात, जय पूजे बिनसे तही, जैसे पुरवन पात, मिथ्या कर माया तजी, तो सहज विचार, कहे कबीर सेवा करो, मन मंज मुरार बिलावल, जन्म मरण का प्रम गया, गोविंद लागी, जीवत सुन समानिया।

राम लिव लाए, राम राम जप निर्मल भय, जन्म जन्म के किल बिख गए, रमत राम जन्म मरण निवार, उचरत राम भय पार उतार, सबते ऊंच राम पर।

लूट लेहे सागत पद खोवे सात जना पगमल मलत होवे पांच पूत जने एक माए ओत पुज खेल कर जगत विहाए तीन गुणा के संग रच रसे इनको छोड़

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन बस अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गही गोंड मोहल्ला पंजवां जा को राखे राखनहार इसका अंग करे निरंकार रहाओ माद गर्भ में अगना जोहे

राम रतन पसे मन आए, सफल जन्म ताका परवान, पार ब्रह्म निट कर जान। भाए भगत प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहो सच वापार। दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तूर। राग गोंड अष्टपदियां, महला पंजवा कर दूजा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, कर नमस्कार पूरे गुरुदेव, सबल मूर्त

संत जपे गुर दियो भगवंत, संगत के मुख उज्जल पए, सगल थान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर बे परवाहे।

कर करना गुरमुख होए बौर नहीं मरना गोंड कूटन सोए जो मन को कूटे मन कूटे तो जमते छूटे कोट कोट मन कसवटी लावे तो कूटन मुक्त भव पावे कूटन किसे कहो संसार सगल बोलन के माहे विचार रहाओ नाचन सोए जो मन सो नाचे झूठ न पतिए पर चै साचे इस मन आगे पूरे ताल इस नाचन के मन रखवाल बजारी सो जो बजार है सोध पांच पलीते को प्रबोध नौ नायक की भगत पछाने सो बाजारी हम गुरमाने तस्कर सोए जे तात ना करे इंद्री कै जतन नाम उच्चर कौ कबीर हम ऐसे लखन तन गुरदेव अतरू बचखन गुण तन गोपाल तन गुरदेव तन अनाद भूखे कवल टैकेव तन ओ संत जिन ऐसी जानी तिन को मिलबो सारग पानी आदि पुरख ते हुए अनाद।

ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा रगाओ। जैसे गाय का बच्चा छूटला थान चोखता माखन कूटला, नाम दियो नारायण पाया पुर पीड़ित अलख लखाया। जैसे बिखे हिद परनारी

ऐसी मत पावे, पहे ने सुन समाध समावे रखाओ। भिखिया पाए भगत पै चले, होवे सो तृप्त संतोष अमुले। ध्यान रूप होए आसन पावे, सच नाम ताड़ी चित लावे। नानक बोले अमृत बाणी, सुनमा शिंदरा औदू निशानी। आसा माए निरास वलाए, नेचो नानक करते पाए। प्रणत नानक अगम सुनाए, गुरचेले की संद मिलाए। दीखिया दारू भोजन खाए, छे दर्शन की सोजी पाए। राम कली मोहला पहला, हम डोलत बेड़ी पाप परी है। पवन लगे मत जाई, सनमुख सिर फेटन को आए। नेचो देह वडियाई, गुर तारे तारन हारिया। दे भगत पूर्ण अविनाशी, हाँ तुझको बलिहारिया। रखाओ सिद्ध साधक जोगी अर जंगम, एक सिद्ध जिन त्याया। परसद पैर सिजते स्वामी, अखर जिन को आया। जब तब संजम।

तुम मैं मान कलाला, तुम देव होते संक न मान हो, हम पुंचे सदा निहाला, हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देव खीरा, हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम स गुणी गहीरा, तुम पूर्ण पूरे है संपूर्ण, हम पी संग अघाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहे।

करनो मद बांसुरी बाजे जेवा तुन आ गाजा नृत करे कर मनुआ नाचे आने कुगर साजा राम को नृतकारी पेखे पेखन हार दयाला जेता सासी गारी रखाओ आखार मंडली तरण सबाई ऊपर गगन चिंदोआ पनम चूला करत अकेला जल ते उपत हुआ पंच तत्कर पुत्रा कीना किरत मिलावा हुआ चंद सूरज दो जरे

जिसे सहाई होए भगवान अनक जतन ओ आके सरंजाम रहाओ करता राखे कीता कौन कीरी जीतो सगला पवन बेअंत महिमा।

सिमरे केवल नाम, बिरले पावे ओ विश्राम, पूजन पाओ कीर्तन आधार। निचल आसन बेसुमार, डिगना डोले कतहु ना तावे, गुर प्रसाद को इहो महल पावे, प्रम पै मोह ना माया जाल। सुन

इष्ट मीत जान सब शलै, हर हर नाम संग तेरा चलै, राम नाम गुण गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत

उड़ चलना, राच रहो तू संग सुपना रहाओ, बाल व्यवस्था बारक अंध, पर जोबन लागा दुर्गंध, त्रिति व्यवस्था संचे माए, बिरध पया छोड़ चलो पछताए, किरण काल पाई दुर्लभ देहे, नाम बिहूनी होई खेह, पशु प्रेत मुग्ध ते बुरी, तिसे ना बूझे जेन ए श्री, सुन कर तार गोविंद गोपाल, दीन दयाल सदा कृपाल, तुम्हें छुड़ावो छुटके बंद, बक्स मिलावो

आन संतोह आया मन पूरा पाए फिर मांगन काहे जाए हर की कथा सुनत पवित जेवा भगत पाई गत मत तो प्रवान जिस हृदय वसाई नांग तेजन उत्तम पाई राम कली महला पंजवा गहो कर पकरी न आई हाथ प्रीत करी चाली नहीं साथ कहो नानक जो त्याग दई तब ओ चरणी आए पई तुण संतो निर्मल विचार राम ना बिन गत नहीं काई गुर पूरा भेटत उधार रखाओ जब उसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर रखे गुमान जब उसको कोई मन पर हरे तब ओ सेवक सेवा करे मुख बिरावे अंत ठगावे इकत ठौर ओ कई ना समावे उन मोहे बहुते ब्रह्मंड राम जनी किन्नी खंड खंड जो मांगे सो भूखा रहे इस संग राचे सो कछु ना लहे इसे त्याग सत्संगत करे वडभागी नानक ओ तरे राम कली महला पंजवा आत्म राम सर्वमय पेख पूर्ण पूर आपा पेख रतन अमोल हृदय मैं जान अपनी वस्तु तू आप पछाण पी अमृत संतन प्रसाद वड़े भाग होवे तो पाईए बिन जेवा क्या जाने स्वाद रहाओ आठ दस बेद सुने कह डोरा कोड़ प्रगास न दिसता अंधेरा पशु प्रीत घास संग्रच जिस नहीं बुझावे सो किद बुझ जानन हार रहा प्रवजान ओत पोत भगतन संगान बिगस बिगस अपना प्रवगाव है नानक तिन जम नेड़ ना आव है राम कली महला पंजवा दीनो नाम इयो पवित हर तन रास निरास ए बित काटी बंद घर से वालाए हर घर भगत राम गुण गाए बाजे अनहद बाजा रसक रसक गुण गावे हर जन

हर शरण मन तन हर ओई ते आया, आनंद हर रूप दिखाया। तिसही की ओर सदीव, जाके किन्ने गए जीव। सिमरत हर करत निधान, रखन हार निदान। सर्व की रेण होवी जे आप।

सागर तरियो बाशर खोज खेद न पायो नए पुनरोज सिंध समायो कट के माघे करण हार कहो किश अज जनाघे जो छूटो तो जाए पयाल जो कढ़ो तो नजर निहाल पाप पुन हमरे वस नाघे रसक रसक नानक गुण गाहे राम कली मोहल्ला पंजवा ना तन तेरा ना मन तोहे माया मोहे बया पिया तोहे उदम करे गाडर जो शेल अचिंत जाल काल चक्कर पेल हर चरण कमल सरनाए मना राम नाम जप संग सहाई गुरमुख पावे साज तना रहाओ ऊने काज न होत पूरे काम क्रोध मद सदगी चूरे करे विकार जीरे के ताई गाफल संग न तसुआ जाई तरत तो अनक छल जाने कौडी कौडी को खाग सिर छाने जिन दिया तसे न चेते मूल मिथ्या लोभ न उतरे सूल पार ब्रह्म जब पय दयाल जो मन हुआ साधरवाल हस्त कमल लड़ली नू लाए नानक साचे सा समाए राम कली मोहल्ला पंजवा राजा राम की शरणाए निरपो पय गोविंद गुण गाव साध संग दुख जाए रघाओ जाके राम बसे मन माही तुझन दुत्र पेखत नाही अगले का सुवारे अपने हर हर नाम रसनित जपने जिसके मस्तक हाल गुर तरे तो दास अंदेशा का ही करे जन्म मरण की चूकी कान पूरे गुर ऊपर कुर्बान गुर परमेश्वर पेट निहाल तो दर्शन पाए जिस होए दयाल पार ब्रह्म जिक्र पा करे सा संग सो पव जल तर अमृत पीवो साध प्यारे मोह खूजल साते दरबारे अंध करो ताज सगल विकार नानक हर जप उतर हो पार राम कली मोहल्ला पंजवा ईंधन ते बैसंतर भागे माटी को जल दिस जागे ऊपर चरण तले आकाश कड़मे सिंध की ओ प्रगास ऐसा समर्थ हर जीव आप निमकन बिसरे जी भगतन कै आठ पैर मनता को जाप रहाओ प्रथमे माखन पाछे दूध मैलू कीनो साबन सूद पय ते निरपो डरता फिरे हुंदी कौ अणहुंदी हिरे देही गुप्त बदेही दीसे सगले साज कर जग दीसे ठगन हार अन ठगदा ठग बिन वखर फेर फिर उठ लागे संसवा बिन करो बखियान सिमरत शास्त्र वेद पुराण ब्रह्म विचार विचारे कोय नानक ताकी परम गढ़ होय राम कली मोहल्ला पंजवा जोत पावे सो थिया सदा सदा हर की शरणाई प्रभन नाही आन बिया रहाओ पुत कलतर लक्ष्मी दीसे इन में किशु न संग लिया विखे ठकोरी खाए पुलाना माया मंदिर त्याग गया निंदा कर कर बहुत विगूता गर्भ जो में कृत पया पूर्व कमाने छोड़े नाही जम दूत ग्रास्यो महा भया बोले झूठ कमावे अवरा तिस न बूझे बहुत हया असाद रोग उपजिया संदूखन दे बिनासी महा खया जिने निवाजे तिन ही साजे आपे कीने संत जया नानक दास कंठ लाए राखे कर किरपा पार ब्रह्मया राम कली मोहल्ला पंजवा ऐसा पूरा गुरुदेव सहाई जाका सिमरन तिरथा ना जाई रहाओ दर्शन पेहत होए निहाल जाकी तूर काटे जमंजाल चरण कमल बसे मेरे मन के कार्ज सवारे सगले तन के जाके मस्तक राखे हाथ प्रभ मेरो अनाथ को नाथ पतत उदाहरण कृपा निधान सदा सदा जयगे कुर्बान निर्मल मत दे जिस दान तजे विकार बिन से अपमान एक तिहाई के साध के संग पा बनासे नाम कै रंग गुर परमेश्वर सगल निवास कट कट रब रया गुणतास दर्श दे तारो प्रव्यास नित नानक चितवे सच अरदास।

नाम जपत परम सुख पाईए, आवा गौण मिटे मेरे मीत रखाव, गुण गावत हो प्रगास, चरण कमल में होए निवास, संत संगत में होए उधार, नानक भवजल पुत्र सपार, राम कली महला पंजवां, गुरपूरा मेरा गुरपूरा, राम नाम जप सदा सुहेले, सगल बिना से रोग पूरा रखाओ, एक अराध हो साचा सोए, जा की शरण सदा सुख होए, नींद सुहेली नाम की लागी भूख, हर सिमरत दिन से सब दुख, सहज आनंद करो मेरे पाई, गुरपूरे सब चिंत

सुंदर पास तहीजे, तुर की सेवा राम रविजे, नानक ना मिले कृपा प्रभु कीजे, राम कली महला पहला, अंतर उत्खोज अवर न कोई, जो कहिए सो प्रते होई, जुगे जुगंतर साहिब सर सोई, उत्पत परलो अवर न कोई, ऐसा मेरा ठाकुर गैर गंभीर, जिन जपया तिन ही सो पाया, हर के नाम न लगे जम तीर रखाओ, नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहिब अमर अतोल, जेवा सूची साचा बोल, हर दर साचा नही रोल, एक बन में बैसे डुगर अस्थान, नाम सार पते अभमान, ना बिना क्या ज्ञान ध्यान, गुरमुख पावे दरगे मान, हट अंकार करे नी पावे, पाड़ पड़े ले लोग सुनावे, तीर्थ परम सो व्याध न जावे, ना बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद कवे ना रखाई, मनवा डोले नर के पाई, जंपर बादो ले सजाई, बिनावे जियो जल बल जाई, सिद्ध साधक केते मुन देवा, हट निग्रह ना तृप्तावे पेवा, शब्द विचार गहे गुर सेवा, मन तन निर्मल अभमान अपेवा, कर्म मिले पावे सच नाओ, तुम शरणागत रहो सुपाओ, तुम ते उपजो भगति पाओ, जाप जापो

सगल जोन मैं तू सिर तरिया अब तू सीज पावे नी सीजे कारज सबर मन प्रव त्याई जे ईगा ऊहा एक ओही जद का देखिए तत तत ओही ते सेवत मन आस करे जिस विसरे एक निमख न सरे हम अपराधी निर्गुनियारे ना के सेवा ना करु मारे गुर बोहे थबड भागी मिलया नानक दास संग पाथर तरिया राम कली मोहल्ला पंजवा ताउ बिहावे रंग रस रूप ताउ बिहावे माए बापूत ताउ बिहावे राज मिलक वापारा संत बिहावे हर नाम अधारा रचना साज बनी

ताहु रोग सोग परमीजा, ताहु पवन तार जात बेगाए, संत बेगावे कीर्तन गाए, ताहु बेगावे दिन रैन चाल, ताहु बेगावे सो पिड़माल, ताहु बेगावे बाल पढ़ावत, संत बेगावे हर जगावत, ताहु बेगावे नट नाटक निरते, ताहु बेगावे जिया ए हिरते, ताहु बेगावे राज मैं डरते, संत बेगावे हर्ज करते, ताऊ बिहावे मता मसूरत, ताऊ बिहावे सेवा जरूरत, ताऊ बिहावे सोधत जीवत, संत बिहावे हरस पीवत, जित को लाया तित ही लग

करता तेरे सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सदा तेरी नाम मन मसावे नाम जिनके मन मसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आय वसया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिदिया ए वडियाईया कहे नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कहो से नाम हर के लागे कहे नानक तहे सुख हुआ तित कर अनहद वाजे साची लवे बिन दे निमाणी लवे बाजहो क्या करे वेचारिया तुझ बास मरत कोए नाही कृपा कर बनवारिया केस नौ होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया।

संतो कछु अकथ कहानी। ए मन चंचला चितराई किने न पाया, चितराई न पाया किने। तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी, जेन एद परम भुलाया। माया ता मोहनी तने कीती, जिन ठगोली पाईया। कुर्बान कीता तसे विटो, जिन मोह मीठा लाया। कहे नानक मन चंचल चितराई किने न पाया, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। यो कुटुंब तू जे देखदा, चले नाही तेरे नाले। साथ तेरे चले नाही, इस नाल क्यों चित लाई है। ऐसा काम मूले ना कीचे, जित अंत पछोताई है। सगुरु का उपदेश सुन तू, होवे तेरे नाले। कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। अगम अगोचर

नित नित मंगल सुनिए राम कली मोहल्ला पुनवा हर हर त्याय मना खिन नाम सारिये राम रामा राम रमा कंठ उतारिये उतार हर हर पुरख पूर्ण पार ब्रह्म निरंजनो भय दूर करता पाप हरता दुसे दुख पाव खंडनो जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिये बिनवंत नानक मेरे संग साधु दिन सरण चितारिये चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिर्ख पंडार नाम अनंत तरा नाम नरहर निदान जिनके रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्यायना केल खरना ना पुने चरणा ना जमकी त्रास हरा बिनवंत नानक राज जन की चरण कमल आसरा गुण बेंत स्वामी तेरे कोई ना जानई देख चलत दयाल सुन भगत वखानई जी जंत तो त्यावे पुरख पद परमेश्वरा सर्व जाजक एक दाता करना में जगदीशरा साधु संत सुजान सोई जिसे प्रभु जी मानई बिनवंत नानक करो कृपा सोए तुदे पछानई मोए निर्गुण अनाथ शरणी आया बाल बाल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया गुर नाम दिया कुशल थिया सर इच्छा पुनिया जलने बुझाई सांत आई मिले त्रिव शून्या आनंद हरख सहज साते महामंगल गुण गाया बिनवंत नानक नाम प्रभु का गुरपूरे ते पाया राम कली मोहल्ला पंजवा रुण चुण शब्द अनाहद नेत उठ गाये संतन के केल विसा दुख मिनासन हर नाम जपिये गुरमंतन के हर नाम लीजे अम्यो पीजे रैन दिस आरा दिए योग दान अनेक क्रिया लग चरण कमले साधिये पाओ भगत दयाल मोहन दुख सगले पर हरे बिनवंत नानक तरे सागर त्याय स्वामी नर हरे सुख सागर गोविंद सिमरन भगत गावे गुण तेरे राम अंध मंगल गुर चरणी लागे पाए सुख नेरे राम सुख निधान मिलया दुख हरिया कृपा कर प्रवराखिया हर चरण लागा परम पौ भागा हर नाम रसना पाखिया हर एक चितवे प्रभ एक गावे हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सदगुर पाया मिल रही गे प्रभ साजना मिलगा कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दामोदर माधो अंत न पाए गे गुनिए राम दयाल दुख हर शरण दाता सगल दुख निवारण मोह सो विकार बिखड़े

भय चूरिये तनमय चीत गवार तन विरली सच संचय निर्मल नाम प्यार तन गया ता जान देह जे राचे रंग एक मन दीजे सिर सौंपिये पी करते की टेक तंदा तापत रह गए मनमय शब्द आनंद दुर्जन ते साजन पये टेटे गुर गोविंद बन बन फिरती टूंढती बस्त रही कारबार सतगुर मेली मिल रही जन्म मरण दुख निवार ना ना करतना छूटिये विण गुण जम पुर जाहे ना तिस एहो ना ओ है अगुण फिर पछताहे ना तिस ज्ञान ना ध्यान है ना तिस कर्म ध्यान विण नावे निरपो कहा क्या जाना अब महान था करी के अपड़ा हाथ नहीं ना पार ना साजन छे रंगले किस पे करी पुकार नानक प्रयो प्रयोजे करी मेले मेलनहार जिन छोड़ी सो मेल सी गुर के खेत अपार पापुरा पापी को प्यारा पावल दे पापे पासारा पर हर पाप पछाने आप ना ते सोग विजोग संताप नरक पड़न तो क्यों रहे क्यों बंचे जमकाल क्यों आमन जाना विसर टूड़ बुराखे काल मन जंजाली वेड़िया पी जंजाला माहे विड़ नावे क्यों छूटिये पापे पजे पचाहे फिर फाही फासे कौआ फिर पछताना अब क्या हुआ फाथा चो जुगे नहीं बूझे सतगुर मिले ता आखी सूझे जो

कचियले सुन कहां कर वासो ज्ञान की मुद्रा कमन कचियले घट घट कमन निवासो काल का ठीका क्यों जिलाईले क्यों निरभो कर जाइये सह संतु का आसन जाने क्यों शेदे बैराइये गुर के शब्द हमें बिख मारे ता निरकर हो गए वासो जिन रच रचिया तेस शब्द पछाण नानकता का दासो कहां ते आवे कहां यो जावे कहां यो रहे समाई एस शब्द को जो अर

हुक्मे रहे समाई पूरे गुरते साज कमावे गात मित सब दे पाई आद कौ बिस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकल्पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले धड़कड़ साचा सर्ब जिया गुर बचनी अवगत समाइये तत् निरंजन सहज लहे नानक दूजी कारना करनी सेवै सिख सो खोज लहे हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणे जी जुत सा जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगतो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सदगुर परते परम पद पाईए साचे शब्द समाए लिया एक को सच एका जाने हो में दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाणे अंतर कमल प्रगास थिया जीवित मरे ता सब कुछ सूझ है अंतर जाने सर्ब दया नानक ताको मिले वडाई आप छाणे सर्ब जिया सच उपजे सच समावे साचे सूचे एक मया झूठे आवे ठवर ना पावे दूजे आवा गौण पया आवा गौण मिटे गुर शब्दी आपे परखे बगसलया एक आवेदन दूजे व्यापी नाम रसायन विसरया तो बुझ जिस आप बुझाए गुर कै सबसो मुक्त पया नानक तारे तारण हारा होमे दूजा पर हरिया मनमुख फूले जम की कान पर कर जो है हाने हान मनमुख परम पवे बेबान वे मार्ग मूस मंत्र मसान शब्द ना चीने लवे कुबान नानक साचरते सुख जान गुरमुख साचे का पौ पावे गुरमुख बाणी अगड़ कढ़ावे गुरमुख निर्मल हर गुण गावे गुरमुख पवित्र परम पद पावे गुरमुख रोम रोम हर त्यावे नानक गुरमुख सास समावे गुरमुख परचे वेद विचारी गुरमुख परचे तरिये तारी गुरमुख परचे सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचे अंतर विद जानी गुरमुख पाइये अलख अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथे विचार गुरमुख निभगे सब परवार गुरमुख जपिये अंतर प्यार गुरमुख पाइये शब्द अचार शब्द भेद जाने जानाई नानक होमे जाल समाई गुरमुख धरती साचे साजी इसमें ओपत खपत सो बाजी गुर के शब्द रपे रंग लाए साजर तो पास्यों कर जाए साज शब्द बेन पत नहीं पावे नानक बिन नावे क्यों साच समावे गुरमुख अष्ट सिद्धि सा बुद्धि गुरमुख पवजल तरगे सच सुधि गुरमुख सार अवसर विद जाने गुरमुख परविरत निर्विरत पछाणे गुरमुख तारे पार उतारे नानक गुरमुख शब्द निस्तारे नामे राते होमे जाए नाम रते सच रहे समाए नाम

को विधाता सुनो सुन कहे सब कोई अनहत सुन कहां ते होई अनहत सुन रते से कैसे जिसते उपजे तिस ही जैसे कोई जन्म ना मरे ना आवे जाहे नानक गुरमुख मन समझाहे नौ सर सुभर दसवें पूरे ते अनहत सुन वजावे तूरे साचे राचे देख हजूरे कड़कड़ साज रहया पर पूरे गुप्ती बाणी प्रगट होए नानक परख लए सच सोए सहज पाई मिली गए सुख होवे गुरमुख जागे नींद न सोवे सुन शब्द अपरंपर धारै कहते मुक्त शब्द निस्तारै गुर की दीखिया से सच राते नानक आप गवाए मिलन नहीं प्राते कबुद चवावे सोकत ठाए क्यों तत न बूझे चोटा खाए जमदर बाधे कोए न रख बिन शब्दे न ही पद साख क्यों कर बूझे पावे पार नानक मनमुख न बूझे गवार कबुद मिटे

तू सच्ची नाई। श्लोक कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोए, राम कसौटी सो सहे, जो मर्जी वा होए मोहल्ला तीजा। क्यों कर यो मन मारिए, क्यों कर मृतक होए, कया शब्द न मानई, होमे छड़े न कोए, गुर प्रसादी होमे छुट्टे, जीवन मुक्त सो होए। नानक जिस नु बख्शे तिस मिले, तिस बिघन न लागे कोए मोहल्ला तीजा। जीवत मरना सबको कहे, जीवन मुक्त क्यों होए, पय का संजम जे करे, दारू पाओ लाए, अनदन गुण गावे सुख सहज, बिग पवजल नाम तरे, नानक गुरमुख पाईए, जा को नदर करे पौड़ी, दूजा पावर चायोन, त्रै गुण वरतारा, ब्रह्मा विष्ण महेश उपायन, हुक्म कवावन कारा, पंडित पढ़ दे जोत की, ना बूझे बिचारा, सब कुछ तेरा खेल है, सच सृजनहारा, जिस पावे तिस बख्श लहे, सच शब्द समाई।

जम नाहे दुख जिसतू आवे चित तिसके काड़िया जिदा करता मित्र सब काज सवारिया जिसतू आवे चित तो परवान जन जिसतू आवे चित बहुता ते स्थान जिसतू आवे चित तो वड परवारिया जिसतू आवे चित तिन कुर उधारिया सलोक महला पंजवा अंदरों अन्ना बारों अन्ना कूड़ी कूड़ी गावे देही तोवे चक्र बनाए माया नू बहुतावे अंदर मैल न उतरे होमे फिर आवे जावे नींद व्यापिया काम संतापिया मुखो हर हर कहावे बैसनो नाम कर हो जूता तो कुट्टे क्या फल पावे हंसा विच बैठा बागना बनाई नित बैठा मछी नू तार लावे जा हंस सभा विचार कर देखन ता बग्गा नाल जोड़ कदे ना आवे हंसा हीरा मोती चुगना बग डड्डा फलन जावे उडरिया विचारा बगला मत होवे मंज लखावे जित को लाया तित ही लागा किस दोष दिते जाहर एवे पावे सदगुर सरवर रतनी भरपूरे जिस प्राप्त सो पावे सिख हंस सरवर इकट्ठे होए सदगुर कै हुकम आवे रतन पदार्थ मानक सरवर भरपूरे खाए खर्चरे तोट न आवे सरवर हंस दूर न होई करते एवे पावे जन नानक जिसदे मस्तक भाग तुर लिखिया सो सिख गुरु पै आवे आ करिया कुटम सब तारे सबा सिरट छिडावे महला पंजवा पंडित आखाए बहुती राही कोरड़।

पौड़ी। वड्याई सच्चे नाम की हो जीवा सुन सुने, पशु प्रेत अज्ञान उधारे एक खने। दिन सरैन तेरा नाव सदा सा जापिए, तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे तापिए। रोग सोग दुख वंजे जिस नाउ मन बसे, तिसे प्राप्त लाल जो गुर शब्दी रस। खंड ब्रह्मांड बेअंत उदाहरण हारिया, तेरी शोभा तुध सच्चे मेरे प्यारिया। श्लोक महला पंजवा, मित्र प्यारा नानक जी मैं छड गवाया। रंग कसुंभे भुली तो सज्जन की मैं कीम न पौंदी, हां तुध बिन अड ना लहंदी। महला पंजवा।

फेर फिराहर सदगुर संग दिखाया जाहर जन नानक सच्चे सच समाहर महला पंजवां आहार सब करदा फिरे आर एक ना होए नानक जित आर जग उधर है विरला बूझे कोई पौड़ी।

काया कलालन लहान मेलो गुर का सदगुण कीन रे इसना काम क्रोध मद मस्तर काट काट खसदी न रे कोई है रे संत तय सुख अंतर जा को जब तब देव दलाली रे एक

जब तब संजम गुरमुख भोगी रहाओ। बुद्ध बिपूत चढ़ावो अपनी, सिंगी सुरत मिलाई कर बैराग, फिरो तन नगरी।

गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन पर जियो पिंड था दिया इसकी भाव भगत नहीं साधी रहा पर तन पर तन पर ती निंदा पर अपवाद ना छूटे आवा गवन होत है फुन फुन यो प्रसंग न टूटे जे कर कथा होत हर संतन एक निमखना की नो मैं फेरा लंपड़ चोर दूत मतवारे तीन संग सदा बसेरा काम क्रोध माया मद मस्तर ए संपे मो माही दया धर्म अर गुर की सेवा ए सुपनं तरनाही दीन दयाल के पाल दमुदर भगत बछल पैहारी कहत कबीर पीर जन रखो हर सेवा करो तुम्हारी जे सिमरन

राखी अले मन राम नामा बेदी अले जैसे कनक कला चित मांडी अले रघाव आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुवार पुरंदरीये हस्त विनोद विचार करती है चीत सोगा गर राखी अले मंदर एक द्वार जा जाके गौ चिरावन छाडी अले पांच कोस पर गौ चिरावत चीत सो बछरा राखी।

ऐसो दान नित नित है कीजे, आत्म जो निर्मायल कीजे, आप बराबर कंचन दीजे, राम नाम सर तऊ ना पूजे, मने न कीजे रोस, जमे न दीजे दोस, निर्मल निर्वाण पद कीन लीजे, जस रस राय नंद, राजा मेरा राम चंद, परम में नामा तत् रस अमृत पीजे, राम कली बाणी सर्वदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपो पाव न दर्श, लोहा कंचन हिरन हुए कैसे, जो पार सह न परस, देव संसय गांठ न छूटे, काम क्रोध माया मद मस्तर, इन पंचो मिल लूटे रघा, हम बड़ कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एवद कभे ना नासी, कौरव दास सबे नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे, मुरे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे, राम कली बाणी बेणी जियो की, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, इड़ा पिंगला और सुखमना, तीन बसे इकठाई, बेणी संगम तय प्राग, मन मज्जन करे तताई, संतो तहां नरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोय, तहां नरंजन रमैया होए रघाव, देव स्थाने क्या निशानी, ते बाजे शब्द अनाहद बाणी, ते चंदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी, उपजे ज्ञान दुरमत शीजे, अमृत रस गगनंतर पीजे, इस कला जो जाने पेओ, पेटे ताश परम गुरदेव, दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काटी, ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर धाती, जाग तरह सो कभू ना सोवे, तीन तिलोक समाध पलोवे, बीज मंत्र ले हृदय रहे, मनुआ उल्ट सुन में गह, जाग तरह न अलिया पाख है, पांचों इंद्री बस

साधु तूर करो नित मजन सब केलबिख पाप गवायन पूर्ण पूर रहे कृपा निध काट काट दिष्ट सुमायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुलना लायन दुए कर जोड़ नानक दान मांगे तेरे दसन दास दसायन नट महला पंजवा मेरे सर्बस नाम निधान।

प्रहलाद जन हर नाग पकड़िया, हर राख ली उतराया, हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया। ओ जन्म मर निवार ठाकुर हर गुरमति प्रपाया, हर पतत पावन नाम स्वामी ओ भगत पंजन गाया। हर हार हर उतारे जन नानक नाम समाया, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रखाओ, वडभागी गुर दर्शन पाया, गुर मिले घर प्रव जाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिनी घर प्रापाया, तिन पूछो घर की बाता, पाए लगो निध करो जो दरिया, हर मिल हो कर्म विदाता, लिलाड लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता, हर प्र आए मिले सुख पाया, सब केलबख पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंक पाये वडभागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा, सब सिद्ध साधक मुनजना, मन पावनी घर त्यायो, अपरम्परो पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो, रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेत्यो हर रायो, हरियान मिल्यो सदगुरु, खिन बंद मुक्त करायो, प्रा मस्त के तुर लिखया, गुरमती घर लिवलायो, पांच शब्द दर गए बाजया, हर मिल्यो मंगल गायो, पतत पावन नाम नर हर, मंद भागियां नहीं पायो, ते गर्भ ज्यो नहीं गालिये, ज्यो डोन जरे गलायो, मत दे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन में लायो, हर राम नाम में रहो लागो, जन नानक नाम समायो, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा, मेरा मन राम नाम रस लागा, कमल प्रगास पया गुर पाया, हर जप्यो परम पो भागा रगाओ, पय पाए भगत लागो मेरा हीरा, मन सोयो गुरमत जागा, केल बिख खीन पय सांत आई, हर उतारियो वडभागा, मान मुख रंग कुसुंभ है कछुआ, ज्यो कुसुम चार दिन चागा, खिन में बिनस जाए परताप, दंड तरमरा एका लागा, सत संगत प्रीत साध अत गूढ़ी, जो रंग मजीठ बो लागा, ताया कापर चीर बो फारे, हार रंग न लहे सपागा, हर चारो रंग मिले गुर सोभा, हार रंग चलू ले रंगा, जन नानक तिनके चरण पखारे, जो हर चरणी जन लागा, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा, मेरे मान भाज हर हर नाम गोपाला, मेरा मातन लीन पया राम नामे, मत गुरमत राम रसाला, रहाओ गुरमत नाम त्यागे हर हर, मन जपगे हर जपमाला, जिनके मस्तक लिखिया हर मिलया।

प्रसाद हर समर्थ की सरना जीव पिंड तनरास मेरी प्रभ एक कारण करना रहाओ सिमर सिमर सदा सुख पाइये जीवने का मूल रब रया सरबत।

पूरया सगल मंडल एक स्वामी सोए, करन हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ, बलिहार जाए सदा नानक देव अपना नाओ, माली गौड़ा बाणी भगत नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तन तन ओ राम बेन बाजे, मदर मदर तुन अनहत गाजे, रहाओ तन तन मेघा रोमावली, तन तन कृष्ण ओढ़े काम

मेरो बाप माधो तू तन केसो सामलियो बीठ लाए रखाओ कर तरे चक्कर बैकुण ते आए गृहस्थी के प्राण उधारी अले दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारी अले गोतमनार हल्या तारी पावन केतक तारी अले ऐसा अधम अजात नाम दियो ताओ शरणागत आई अले सबे कट राम बोले राम मां बोले राम बिना को बोले रे रखाओ एकल माटी कुंचर चीटी भाजन गए बो नाना रे अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे एकल चिंता राख अनंता और तजो सवया सारे परमे नामा पहने कामा को ठाकुर को दासारे

सब नगरी में एको राजा सबे पवित्र है थावा बाबा देवसा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रहाओ बुरा पला किस आपस ते जाने ए सगल विकारा यो फरमाया खजम का हुआ वरत यो संसारा इंद्री तात सबल कहित है इंद्री किसते हुई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लेवलागी दुबदा तदे बेनासी जुत पाना सो सतकर मानिया काटी जमकी फासी पंत नानक लेखा मांगे कवना या चूके मन अवमाना तास तास धर्म राय जपत है।

एक सच्चा सब सेमदी तुर पाग मिला बाहोय। गुरमुख मेरे से ना विछड़े पावे सच सोए। एक भगती सार ना जाननी मनमुख परम भुलाए। ओ ना मितिया पवरतदा करना किशु ना जाए। जिस नाल जोर ना चलई खले कीचे अरदास। नानक गुरमुख नाम मन वसे ता सुन करे साबास। मारू महला तीजा मारू ते सीतल करे मनुरहो कंचन होए। सो सच्चा सालाइए तिस जीवड़ अवर।

दान आए, त्याग्यो सगला मान महत्ता, दास रेण शरणाए, कहो नानक हर मिल पे एक महा आनंद सुख पाए। मारू महला पंजवा, कवन थान तीरियो है नामा, कवन बस्त अहंकारा, कवन चेन सुन ऊपर सोयो, मुक्ते सुन कर गारा। सुनो रे तू कौन कहां ते आयो, एती ना जानो केती क मुदत, चलते खबर ना पायो रघाव। सैन सीर पवन अर पानी, बजदा खिमा ने प्राते, पंच तत मिल पयो संजोगा, इन मैं कवन दोराते। जिन रच रचिया पुरख विधाते, नाले हो में पाई, जन्म मरण उसी कौहाय रे, ओहा आवे जाई। वर्ण चेन नाई किश रचना, मिथ्या सगल पसारा, पंत नानक जब खेल उजार है, तब एक एक अंकारा। मारू महला पंजवा, मान मोह अर लोभ विकारा, बियो चीत ना काले हो, नाम रतन गुण हर बनजे, लाद वखर ले चाले हो। सेवक की ओढ़ किनभी प्रीत, जीवत साहेब सेव अपना, चलते रखो चीत रहाओ। जैसी आज्ञा की नहीं ठाकुर, तिस्ते मुख नहीं मोरियो, सहज आनंद रखियो ग्रे पीतर, उठ ओवाहू कौ दौरियो। आज्ञा मैं पूख सोई कर सूखा, सो हर कनी जाने हो, जो जो हुक्म पयो साहिब का, सो माथे ले माने हो। पयो कृपाल ठाकुर सेवक कहो, सबरे हलत पलाता, तन सेवक सबल ओ आया, जिन्ना न खसम पछाता। मारू महला पंजवा, खुलिया कर्म कृपा पई ठाकुर, कीर्तन हर हर गाई, समथा का पाए बिश्रामा, मिट गई सगली ताई। आप मोहे जीवन पदवी पाई, जीत आओ मन पुरख विधाता, संतन की शरणाई रखाओ। काम क्रोध लोभ मोह निवारे, निवरे सगल बैराई, सद हजूर हाजर है नाजर, कथे न पयो दूराई। सुख शीतल श्रद्धा सा पूरी, होए संत सखाई, पामन पतत किए खिन पीतर, महिमा कथन न जाई। निरपो पय सगल पय खोए, गोविंद चरण उठ

छोड़ जाए खिन पीतर ताको, ओवा को फिर ताव सरे, अपने प्रभ को क्यों ना संहार सरे, बैरी संग रंग रच रसया।

असाध रोग उपजो तन पीतर तरत न काहू टारियो प्रा विसत मां दुख पायो यो नानक तत विचारियो मारू मोहल्ला पंजवां चरण कम प्रवरा के चीत हर गुण गावे नीता नीत इस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रखाओ जाके वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार नानक गए हो सच।

मन नहीं हर घर गावा, हरख सोग लोभ मोह रहत है, निर्मल हर के संता, तिनकी तूड़ पाए मन मेरा, या दया करे भगवंता, कहो नानक गुर पूरा मिलया, ता उतरी मन की चिंता, मेरा अंतर जामी हर राया, सब के जाने मेरे जी का प्रीतम, बिसर गए बक बाया, रहाओ दूजा, मारू महला पंजवा, कोट लाख सर

सुबर गुण नहीं, बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज सब सुख उपजे, बिन भागा तन नाहे। जिनके नाम ना मन बसे, से बादे दुख सहाहे। जिन्नी नाम सारिया, ते किताए संसार। आगे पासे सुख नहीं, गाडे लादे शार। विछड़िया मेला नहीं, तू कणु जमद्वार। अगे क्या जाना नाहे, मैं भूले तू समझाए। भूले मार्ग।

गुरपूरे सा वास है, काटे मन पीरा, लाला गोला तनी को क्या कहो बड़े आई है, भाणे बक्से पूरा तनी, सच कार कमाइए, विछड़िया को मेल लए, गुर को बल जाइए, लाले गोले मत खरी, गुर की मत निकी, ताती सुरत सुहावनी, मानमुख मत फीकी, मन तन तेरा तू प्रभु, सज तीरक तुरकी, सचे बैसन उठना, सच भोजन भाखिया, चित सचे वितो सचा, साचा रह चाखिया, साचे घर साचे रखे, गुर बचन सुपाखिया, मनमुख आलस घणो, फाथे उजाड़ी, फाथा चुगे न चोगड़ी, लग बंद बिगाड़ी, गुर प्रसादी मुक्त होए, साचे ने ताड़ी, अनहत लाला बिदया, प्रभ हेत प्यारी, बिन साचे जियो जल बलो, झूठे वेकारी, बाद कारा सब छोड़िया, साची तरतारी, जिन्नी नाम सारिया।

युगत सुजान स्वामी सदा राखण हार दुख दर्द कलेश बिन सह जिस बसे मन माहे मृत नरक स्थान बिखड़े बिखना पोहे ताहे रिद्ध सिद्ध नवनिध जा कहे अमृता प्रवाह आद अंते मद पूरन ऊच अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुंजा वेद करे उचार तेमर स्वामी सुख सहज पुंच नहीं अंत पारा वार अनक प्राशित मिटे खिन मह हृदय जप भगवान पावना ते महापावन ओड़दान इसनान बर बुद्ध सुध प्राण सर्वस।

तले उगाए बैसे हो, शरम ना रहे हो शरीर, मांस अगर नए व्यापे किने उतरे हो तीर, चंदन अगर कपूर लेपन ते संगे नहीं प्रीत, विष्टा मूत्र खोद तेल तेल, मन ना मनी विपरीत, ऊच नीच विकार सुकृत, संग लगन सब सुख शत्र, मित्र सतर ना कछु जाने, सर्व जी समत कर प्रगास, प्रचंड प्रगटेओ अंधकार विनाश, पवित्र अपवित्र है करण लागे, मन ना पयो विकात, सीत मंद सुगंध चलेओ, सर्व थान समान, जहां साक्ष तहां लागेओ, तिल ना संका मान, तो पहाए अपहाए जो निवटे आवे, सीत ताका जाए, आप पर का कश ना जाने, सदा सहज सुपाए, चरण शरण सनात त्यो मान।

तेनी संगम आठसठ अंक समाई हे। आपे सिद्ध साधक विचारी आपे राजन पंचाकारी तख्त बहे अदली

वेपरवाहे आप उपाए दान सुमाहे, आप दयाल दूर नहीं दाता, मिलया सहज रजाई हे। एक सोगी एक रोग वे आपे, जो कुछ करे सो आपे आपे, भगत पाव गुर की मद पूरी, अणगल शब्द लखाई हे। एक नंगे भूखे पवे पवाए, एक हड़कर मरे न कीमत पाए, गात आपगत की सार न जाने, बूझे शब्द कमाई हे। एक तीर्थ नाव है अन्न न खाव है, एक अग्न जलाव है देख पाव है, राम ना बिन मुक्त न होई, किद विद पार लंघाई है, गुरमत छोड़े उजड़ जाई, मन मुख राम न जपे अवाई, पाज पाज बूढ़े कूड़ कमाव है, कूड़ काल बैराई है, हुक्मे आवे हुक्मे जावे, बूझे हुक्म सो साच समावे, नानक साच मिले मन पावे, गुरमुख कार कमाई है, मारू महला पहला, आपे करता पुरख बेदाता, जिन आपे आप उपाय पछाता, आपे सदगुरे आपे सेवक, आपे श्रेष्ठ उपाई है, आपे नेड़े नाही दूरे, बूझे गुरमुख से जन पूरे, इनकी संगत अहन सलाहा, गुर संगत ए वडाई है, जो जो संत पले प्रव तेरे, हर गुण गावे रसन सेरे, उस्तत करे पर दुख दालद, जिन नाही चिंत पराई है, ओए जाग तरह है न सूते दिस है, संगत कुल तारे साज परिस है, कालमल मैल नहीं ते निर्मल, ओए रह भगत लिवलाई हे, बुझो हर जन सदगुर बाणी, यो जोवन सास गए दे पुराणी, आज काल मर जाई गे प्राणी, हर जप जप हृदय ते आई हे, छोडो प्राणी कूड़ कबाड़ा, कूड़ मारे काल उछाड़ा, शायद कूड़ पते मन होमे, दो मार्ग पते पचाई हे, छोड्यो निंदा तात पराई, पड़ पड़ दजे सातन आई, मेल स संगत नाम सलाह, आत्मराम सखाई हे, छोडो काम क्रोध बुरियाई, होमे तंद छोडो लंपटाई, सदगुर शरण परो ता उबरो, क्यों तरिये पवजल पाई हे, आगे बेमल नदी अग्न बिख चेला, तिथे अवर न कोई जियो अकेला, पाड़ पड़ अग्न सागर दे लहरी, पड़ दजे मन मुक्ताई हे, गुर पे मुक्त दान दे पाने, जिन पाया सोई बिद जाने, जिन पाया तिन पूछो पाई, सुख सदगुर सेव कमाई हे, गुर बिन उर्ज मरे बेकारा, जम सिर मारे करे खुवारा, बादे मुक्त नहीं नर निंदक, डूबे निंद पराई हे, बोलो साज पछाणो अंदर, दूर नहीं देखो कर नंदर, बिघन नहीं गुरमुख तर तारी, क्यों पवजल पार लंघाई है, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अबनासी, ना जीव मरे न मारिया जाई, कर देखे सब दर जाई है, ओ निर्मल है नाही अंधियारा, ओ आपे तख्त बहे सत्यारा, शायद कूड़े बंद पवाई है, मार जन्म है आई जाई है, गुर के सेवक सदगुर प्यारे, ओए बैसे तख्त सो शब्द विचारे, तात लह अंतरगत जाने, तत संगत साच वडाई है, आप करे जन पितरा तारे, संगत मुद सो पार उतारे, नानक तिसका लाला गोला, जिन गुरमुख कर लिवलाई है, मारू महला पहला, एते जुग वरते गोबारे, ताड़ी लाई अपर अपारे, तुंदू कार निरालम बैठा, ना तद तंद पसारा हे, जो शती तने वरताए, जुत पाना तवे चलाए, तिसे श्रीक न दिसे कोई, आपे अपर अपारा हे, गुप्ते बुझो जोग चत आरे, घड़कड़ वरते उदर मझारे, जो जो एका एकी वरत है, कोई बूझे गुर विचारा हे, बिंद रक्त मिल पिंड सरिया, पौन पानी अग्नि मिल जिया, आपे चोज करे रंग महली, होर माया मोह पसारा हे, गर्भ कुंडल में उर्द त्यानी, आपे जाने अंतर जामी,
ساس ساس سج نام سمالے انتر ادھر مجھارا ہے چار پدارتھ لے جگ آیا شیو سکتی کر واسطہ پایا ایک سارے تاں پڑ سارے

आपे बक्सलाए सुख पाए, पूरे शब्द मिलाई है। दुर्मत झूठी बुरी बुरियार, औगुणियारी औगुणियार, कच्ची मत फीका मुख बोले, दुर्मत नाम न पाई है। औगुणियारी कंत न पावे, मन की झूठी झूठ कमावे, फिर का साओ न जाने मूर्ख, बिन गुर बूझ न पाई है। दुर्मत खोटी खोट कमावे, सीगार करे फिर खसम न पावे, गुणवंती सदा फिर रावे, सदगुर मेल मिलाई है। आप पे हुम करे सा विख है, एक ना बख्स लय तुर लिख है, अन दिन नाम रते सद पाया, आपे मेल मिलाई है। हौमे तात मोहरस लाई, गुरमुख लिव साची सह सुमाई, आपे मिल है आपे कर विख है, बिन सदगुर बूझ न पाई है। एक शब्द विचार सदा जन जागे, एक माया मोहे सोए रहे अपागे, आपे करे कराए आपे, होर करना किशु न जाई है। कार मार गुर शब्द निवारे, हर का नाम रखे उरतारे, सदगुर सेवा ते सुख पाया, हर के नाम समाई है। दूजे पाए फिरे देवानी, माया मोहे दुख माए समानी, बहुते पेख करे नह पाए, बिन सदगुरु सुख ना पाई है। किसनु कहिगे जा आप कराए, जित पावे तित राहे चलाए, आपे मेहरवान सुखदाता, जो पावे तिवे चलाई है। आपे करता आपे भुगता, आपे संजम आपे जूता, आपे निर्मल मेहरवान मसूदन, जेदा हुक्म ना मेटिया जाई है। सेवड़ पागी जिन्नी एको जाता, काट काट वस रहा जग जीवन दाता, एक ते गोबत प्रगट है आपे, गुरमुख प्रम पहु जाई है। गुरमुख हर जु एको जाता, अंतर नाम शब्द पछाता, जे तू दे सोई जन पाए, नानक नाम वडाई है। मारू महला तीजा, सच सारा ही गैर गंभीर है, सब जग है।

कंचन काया गुरमुख बूझे जिस अंतरनाम निवासी है। सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पूजन सच आधारा। सदा त्रिवत पवित्र है पावन जित कड़ हर नाम निवासी है। हों तिन बलिहारी जो साचे लागे हर गुण गावे अनदिन जागे। साचा सुख सदा तिन अंतर रसना हर रस रासी है। हर नाम चेता अवर न पूजा एको सेवी अवर न दूजा। पूरे गोर सब सच दिखाया सच्चे नाम निवासी है। प्रम प्रोजोनी फिर आया आ भूला जा खसम भुलाया। हर जू मिले ता गुरमुख बूझे तीने शब्द अविनाशी है। काम क्रोध भरे हम अपराधी क्या मोल है बोलह ना हम गुणना सेवा साधी। डुबदे पाथर मेल रहे हो तुम आपे सात नाम अविनाशी है। ना कोई करे न करने जोगा आपे करे करावे सो होएगा। आपे बगसले सुख पाए सदही नाम निवासी है। यो तन धरती शब्द बीज अपारा हर साचे सेती वणज वापारा। सहतन जम्या तोट न आवे अंतर नाम निवासी है। हर जीव अवगुण आरे नू गुण कीजे आपे बख्स लहे नाम दीजे। गुरमुख होवे सो पद पाए एकत नाम निवासी है। अंतर हर तान समझ न होई गुर प्रसादी बूझे कोई। गुरमुख होवे सो तन पाए सदगी नाम निवासी है। अन लवाओ परम पुलाई माया मोहे सुध न काई। मानवक अंधे किशु न सूझे गुरमत न परगासी है। मानमुख होमे माया सूते अपना करना संभाले अंत विगूते। पर निंदा करे वो चिंता जाले दुखे दुख निवासी है। आपे करते कार कराई आपे गुरमुख दे बुझाई। नानक नाम रते मन निर्मल नामे नाम निवासी है। मारू महला तीजा एको सेवी सदा थिर साचा। दूजे लागा सब जा काचा गुरमती सदा सच साला ही। साचे ही साच पतीजे हे तेरे गुण बहुते मैं एक न जाता। आपे लाए लाए जग जीवन दाता आपे बगसे दे वडियाई। गुरमत यो मन पीजे हे माया लहर शब्द निवारी। यो मन निर्मल होमे मारी

मेरी बिनस गई हो मैं मत मेरी अंगीकार किया प्रभ अपने जग में शोभ सुहाई है जय जय कार्य पू जगदीश बल बल जाई प्रभ अपने ईस इस बिन दूजा अवर न दीस एका जगत सुबाई है सत सत सत प्रभ जाता गुर प्रसाद सदा मनराता सेमर सेमर जीवे जन तेरे एक अंकार समाई है भगत जना का प्रीतम प्यारा सबे उदाहरण खसम हमारा सिमर ना पुन्नी सब इच्छा जन नानक पै जरखाई हे मारू सोल हे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद संगी जोगी नार लबटाणी उर्ज रही रंग रसमाणी किरत संजोगी पै एकत्रा कर दे भोग बिलासा हे जो पिर करे सो तन तत माने फिर तने सीगार रखे संगाने मिल एकत्र वसे दिन राती प्रयो दे तने दिलासा हे तन मांगे प्रयो बोब दितावे जो पावे सो आन दिखावे एक वस्त को पहुंच न सके तन रहती भूख प्यासा हे तान करे बिनो दो कर जोर प्रे प्रदेश न जाहो वसो कर मोर ऐसा बंज करो ग्रे पीतर जित पुत्रे भूख प्यासा हे सगले कर्म धर्म जुग साधा बेन हरस सु तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत्संगे तो तन पेर आनंद उलासा हे तन अंधी पिर चबल सियाना पंच तत् का रचन रचाना जे वखर को तुम आए हो तो पायो सतगुर पासा हे तन कहे तू वस मैं नाले त्रे सुखवासी बाल गोपाले तुझे बिनाम हो कितकी ना लेखे वचन दे छोड़ ना जासा हे फिर कहया हुक्मी बंदा ओ भारो ठाकुर जे कान ना शंदा जिचर राखे तिचर तुम संग रहना जा सदे ता ऊर से दासा हे जो प्रे बजन कहे तन साचे तन कछु न समझे चंचल काचे बहोर बोर फिर ही संग मांगे ओ बात जाने कर हासा हे आई आग्या फिर हो बुलाया ना तन पुशी ना मता पकाया ऊर सधायो शूटर माटी देख नानक मिथन मुहासा हे रे मन लोभी सुन मन मेरे सदगुर सेव दिन रास देरे बिर सदगुर पचमो ए सागत निगुरे गल जम फासा हे मनमुख आवे मनमुख जावे मनमुख फिर फिर चोटा खावे जितने नरक से मनमुख भोग गुरमुख लेपना मासा हे गुरमुख सोए जे हर जियो पाया से कौन मिटावे जे प्रप है राया सदा आनंद करे आनंदी जे सिर पाओ पया गल खासा हे हों बलिहारी सतगुर पूरे शरण के दाते बजन के सूरे ऐसा प्र मिलया सुख दाता विछड़ न कत ही जासा हे गुण निदान किस कीम न पाई घट घट पूर रहे हो सब ठाई नानक शरण दीन दुख पंजन हों ऋण तेरे जो दासा हे मारू सोल हे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद करे आनंद आनंदी मेरा कड़ कड़ पूर्ण सिर सिरे नबेरा सिर साहा के सच्चा साहेब और नाही को दूजा हे हरखवंत आनंत दयाला पलट रहे प्रभ सर्व उजाला रूप करे कर वेखे विगसे आपे ही आप पूजा हे आपे कुदरत करे विचारा आपे ही सच करे पसारा आपे खेर खिलावे तिन राती आपे सुन सुन पीजा हे साचा तख्त सची पातशाही सच खजीना साचा साही आपे सत थारे सब साचा सच्चे सजवर तीजा हे सच तपावस सच्चे केरा साचा थान सदा प्रतेरा सची कुदरत सची बाणी सच साहेब सो कीजा हे एक आप तू है वड़ा राजा हुक्म सच्चे के पूरे काजा अंतर बार सब के जाने आपे ही आप तीजा हे तू वड़ रसिया तू वड़ भोगी तू निर्वाण तू है ही जोगी सर्व सुख

सत संतोख दिया गुरपूरे, नाम अमृत पीपा नाहे, गुर की बाणी समय समाणी, आप सुनी ते आप वखाणी, जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया निचल थाना हे, सगुर की महिमा सतगुर जाने, चुग चुग करे सो आपन पाने, साधु तूर जाते जन तेरे, नानक सत कुरबाना हे, मारू सोल हे, महला पंजवा, एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, आद निरंजन प्रभु निरंकारा, हमें वरते आप निरारा, वर्ण जात तेर नहीं कोई, थवग में सिर ट्यो पाए दा, लगत चौरासी जो

स्वामी अगम अपारणा तुद बिन दूजे के साराही एको एक जपी मन माही हुक्म बूझन पए निहाला ए भगतां की कालना गुर उपदेश जप के मन साचा गुर उपदेश राम रंग राचा गुर उपदेश टुटे सा बंधन यो परम मोह पर जालना जय राखे सोई सुख थाना हे जे होए सोई पल माना बिन से बैर नाही को बैरी सब एको है पालना दर चूके बिन से अंधियारे प्रड पए प्रा पुरख निरारे आव छोड़ पए सरनाई जिसका साथ खालना ऐसा कोवड़ पागी आया आड़ पैर जिन खदम ते आया ते जन के संग तरे सब कोई तो परवार सुधारना ए बख्शीस खदम ते पावा आड़ पैर कर जोड़ ते आवा नाम जपी नाम सहज समावा नाम नानक मिले उचारना मारू मोहल्ला पंजवा सूर देखना फूल गवारा मिसल मुहारा चूड पसारा जग में कोई रहन न पाए नेचर एक नारायणा गुरपुरे की पौसरनाई मोसूसा परम मटाई एको मंत्र दृढ़ाए औखद सच नाम रिद गायना जिस नामे को तरसे वो देवा सगर पत जा की कर दे सेवा अनाथा नाथ दीन दुख पंजन तो गुरपुरे ते पायना और द्वारा कोई न सूझे तिर पवन तावे ता किसु न बूझे सदगुर साओ भंडार नाम जिस यो रतंत से ते पायना जाकी तूर करे पुनीता तुर नर देव न पावे मीता सत पुरख सतगुर परमेसर जे भेड़त पार परायणा पार जात लोड़े मन प्यारे काम तेन सोही दरबारे तृप्त संतोष सेवा गुर पूरे नाम कमाए रसायणा गुर कै शब्द मरे पंच धातु पए पार ब्रह्म होवे निर्मला तू पार जा फेटे गुर पूरा ता पारस प्रसिद खायना कई बैकुंठ नाही लवे लागे मुक्त बपड़ी पी ज्ञानी त्यागे एकंकार सब गुर ते पाईए हौ बल बल गुर दरसायना गुर की सेव न जाने कोई गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई जिसनु लाए लए सो सेवक जिस बड़ पाग मथायना गुर की महिमा वेद न जाने तुष मात तुन सुन वखाने पार ब्रह्म अपरम पर सदगुर जिस सिमरत मन सीतलायना जाकी सोए सुनी मन जीवे।

आप खपावे तो लेप नहीं एक तिल रंगा, एक जी गुण कमन बखाने, सहज पनी सिद्ध अंत न जाने, नवत नाम जपे दिन राती, ए गुणा ही प्रभु के संगा, ओढ़ गही जगत शरणाया, पय पयान जम दूध दुतर गए माया, हो कृपा इच्छा कर रखो, सास संतन के संग संगा, दृष्ट मान के सगल मथेना, एक मांगो दान गोविंद संतरेना, मस्तक लाए परम पद पावो, जे प्राप्त सो पावेगा, जिनको कृपा करी सुख दाते, तिन साधु चरण लैर दे पराते, सगल नाम दान तिन पाया, अनघा शब्द मन वाजंगा, किरतम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परा पूर्वला, कहो नानक भगत पय शरणाई, दियो दर्श मन रंग लगा, तेरी गतमत तू है जान है, तू आपे कथे रह आप बखाने, नानक दास दासन को करियो, अर पावे दासा राज संगा, मारू मोहल्ला पंजवां, अल्ले अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे, होए पै खाक फकीर मुसाफर, यो दरवेश कबूल दारा, सच निवाज यकीन मुसल्ला, मनसा मार निवार्यो आसा, दे मसीत मन मौलाना।

तूड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरे नाही काहू बेरा, इनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार तजाए, ते जन को उपदेश निर्माल का, तुद बिन नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभु के पैरा, हों बलिहारी सदगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रा बिसरे नाही, आड़ पैर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राते, तू समरथ वडाल का, मारू महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, चरण कमल हिरदे नितारी, गुरपूरा खिन खिन नमस्कारी, तान मन अर्प तई सब आगे, जग में नाम सुहावना, सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे सास वारे, सास ग्रास सुमाले, करता कीता अपना पावना, जाते बिरता को नाही, आड़ पैर हर रख मन माही, साध संग पाच अचुत स्वामी, दरगे सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सह सुगुनौ निध, सर्व कल्याण जे मन में चाह है, मिल साधु स्वामी रावणा, सास्त सिमरत वेद बखाणी, जन्म पदार्थ जीत पुराणी, ताम क्रोध निंदा पर हरिये, हरसना नानक गावना, जिस रूपना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहया दिन राती, जो जो जपे सोई वडभागी, बौड़ना जो नी पावना, जिसनु बिसरे पुरख बिराता, जलता फिरे रहे निताता, अकिरत कणे कौ रखे न कोई, नरक कोर में पावना, जियो प्राण तन तन जिन साजया, माद गर्भ में रख निवाजया, तेस्यो प्रीत शाड अनराता, काहू सिरे न लावना, तार अनुग्रह स्वामी मेरे, कड़ कड़ वस्ते सबन के नेरे, हाथ हमारे कछु होए नाही, जिस जनाए तिसे जनावना, जाके मस्तक तुर लिख पाया, तेसी पुरख न व्यापे माया, नानक दास सदा शरणाई, दूसर रवे ना लावना, आज्ञा दूसू सब कीने, अमृत नाम बिरले ही कीने, ताकि कीमत कहण न जाई, जगत ओई समावना, तोई भगत सोई वरदाता, तोई पूर्ण पुरख विधाता, बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन पावना, मृत दुख सुख लिख पाए, तेल नी बदे कटे ना कटाए, सोई हुए जे करते पावे, कह के आव न्यामना, अंध कूबते से ही काढे, जन्म जन्म के टूटे गंडे, कृपा तारखे कर अपने, मेरे साधु गोविंद त्यामना, तेरी कीमत कहण न जाई, अचरत रूप वड्डी वड्याई, भगत दान मंगे जन तेरा, नानक बल बल जामना, मारू वार महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सलोक महला पहला, वेण गाहक गुण वेतिए, तौ गुण सहगो जाए, गुण का गाहक जे मिले, तौ गुण लाख विकाए, गुण ते गुण मिल पाईए, जे सतगुर माए सुमाए, मोल अमोल ना पाईए, वणजना लीजे हाट, नानक पूरा तो

चानन गुर मिले दुख बिगजा लीना ए पौड़ी माया वेख ना पुल तू मनमुख मूर्खा चलद्या नाल ना चलई सब झूठ दर्ब लखा अग्ञानी अंध ना बूझई सिर ऊपर जम खड़ग कलखा गुर प्रसादी उभरे

पंडित जोत की वेद पढ़ा मुख चार नाखण मध्य पूजिया अपने चज विचार मत सच्चा अखर

त्रिवचनी सुखी हूँ सुखसार। सो ब्राह्मण पला आखिए जे बूझे ब्रह्म विचार, हर साल आगे हर पड़े गुर के शब्द विचार। आया ओ प्रवान है जे कुल का करे उधार, अगे जात ना पुछिए करनी शब्द है सार। और कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना विख्या नाल प्यार, अंदर सुख ना हो वही मनमुख जन्म खुवार। नानक नाम रते से उभरे गुर के हेत अपार। पौड़ी आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा, जो हुक्म ना बूझे खसम का सोई नर कच्चा। जित भावे तित लाएदा गुरमुख हर सच्चा, सबना का साहिब एक है गुर शब्दी रचा। गुरमुख सदा सलाई है सब तिदे जचा, जो नानक आप नचाएंदा तिव ही को नचा। सुध मारू वार महला पंजवा, दखणे महला पंजवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद तू चौ सज्जन मैंडिया, देई सिस उतार। नैन महिंजे तरस दे

कहे कौन तो सृजा सब संसार तू नायक सगल पौन तेरी कुदरत कोई ना जाने मेरे ठाकुर सगल राउन तू अपड़ कोई ना सके तू उबनासी जग उदरण तू थापे चारे जुग तू करता सगल तरण तुद आमन जाना किया तुद लेप ना लगे त्रेण जिस होवे आप दयाल तिस लाभ है सदगुर चरण तू होर उपाय ना लभगी अवनासी सिष्ट करण दखणे महला पंजवा जे तू वत्ते अंगणे अब तरत सुहावी होए एक सकंते भारी मैंडी वात ना पुछे कोए महला पंजवा अबे टोल सुहावणे सौ बैठा अंगण मल पही ना वञे बिरथड़ा जो कर आवे चल महला पंजवा सेज विशाई कंत कू किया हब सीगार इती मंझ ना सुमावई जेगल पैरा हार पौड़ी तू पार ब्रह्म परमेश्वर जोन ना आवगी तू हुक्मी साजे सृष्ट साज सुमावगी तेरा रूप न जाई लखया क्यों तुझे ते आवगी तू सब मैं वरते आप कुदरत देखावगी तेरी भगत परे पंडार तोट न आवगी एह रतन जवेहर लाल कीम ना पावगी जिस होवे आप दयाल तेस सदगुर सेवा लावगी कदे न आवे तोट जो हर गुण गावगी दखणे महला पंजवा जामू पसी हठ मैं पिरी बिहिंजे नाल हब्बे दुख उलायमा।

जति सती प्रव निर्मला मेरे हर भगवंता सा ब्रह्म प्रसार पसारयो आपेखे लंता एहो आवा गमन रचायो कर चोज देखंता तिस भौड़ गर्भ ना पावगी जे देवे गुरमंता जो आप चलावे त्यों चल दे केश वस ना जनता दखणे महला पंजवा कुरिये कुरिये वैद्या तल गाड़ा महरेर वेखे छिटड़ थीव दो जाम खिसंदो पेर महला पंजवा सच जाने कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे नानक आथड़ी मंज।

वैरी मित्र सब कीतिया नहे मंगे मंदा लेखा कोई ना पुछई जा हर भगसंदा आनंद पया सुख पाया मेल गुर गोविंदा सबे काज सुवारे जा तुद पावंदा डखने महला पंजवा देखण कू मुस्ताक मुख के

जापै जो नर उसकी सरणी परै तिस कंबै पापै जन्म जन्म की मल उतरै गुर तूड़ी नापै जिन घर पाणा मन्या तिस सोग ना संतापै हर जियो तू सवना का मित है सब जाने आपै ऐसी शोभा जने की जेवड हर प्रतापै सब अंतर जन वरताया हर जन ते जापै दखणे महला पंजवां जिन्ना पिछे हो गई से मैं पिछे पी रव्यास जिन्ना की मैं आसड़ी तिना महिंजी आस महला पंजवां गिल्ली गिल्ली रोडड़ी पौंदी भाव पव्याए जो

पौड़ी निरपो नाम सारिया नाल माया रचा आवे जाए पवाई है बोजो नी नचा भजन करे तय खिसक जाए बोले सब कच्चा अंदरों थोथा कूड़ यार कूड़ी सब खचा वैर करे निर्वा

ब्यास कहत है सुख को पूछो जाई, कहे कबीर आरामे राम छूटो नाए त बूढ़े पाई। बने बसे क्यों पाई है जौला मनो ना तरे विकार, जे घर बन संसर किया ते पूरे संसार, सार सु पाई गे रामा रंग रवो आत्मे राम।